FM बैंड 101.9 MHz पर ये विविध भारती का उदयपुर केंद्र है FM रेडियो लेक सिटी। आज बुधवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 20 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारे प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह एफएम रेडियो लेक सिटी सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय

में ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दयापरः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

शाम पिया मोरी रंगदे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है।

मारकर है श्याम रंग से, कि श्याम रंग में पिया मोरी रंग दे चुनरिया। पिया कौन है? पिया भी श्याम है। तो यहां शब्दों की सुंदरता देखिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से आप सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 194। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनेगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी आज सुनेगा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फनकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गिरीश कर्नाड पर।

सुबह 10 बजे से सुनवाएंगे आपको पिटारा, इसके अंतर्गत सेल्यूलॉयड के सितारे, इसके अंतर्गत सुनेगा पार्श्व गायिका कमल बरोट से कमल शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से रंग तरंग यादों की महफिल, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 12:05 से, सुरीला सफर दिन में 1 बजे से। दोपहर 2 बजे से सुनेगा त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:30 से, सखी सहेली, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 बजे। आज के विषय हैं विश्व मधुमक्खी दिवस, भाषाओं से जुड़ा संस्कार, साड़ियों का संसार, तंचोई साड़ी, शब्द हमारा, विचार आपके के अंतर्गत सद्भावना, व्यंजन के अंतर्गत ठेकुआ और दाल पीठा, संवादक हैं मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनेगा तराने नए पुराने।

शाम 6:30 से सुनेगा झरोखा, 6:35 से सुनवाएंगे संध्या रंजन। फौजी साथियों इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको राग अनुराग। रात 8 से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन खरीदा हुआ दुख, लेखन शोभा रस्तोगी का, निर्देशन दुर्गा मेहरोत्रा का। और रात 8:15 से चित्रलोक। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 9 से। रात 10 से सुनिएगा छाया गीत, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 से ढलती जाए रात। और रात 11 से रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: नमस्कार। ऐसी लागी लगन इस श्रृंखला के माध्यम से हम भक्ति रस की वर्षा से भीग रहे हैं और विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। नमस्कार अनूप जी।
2: नमस्कार जी।
1: गंगा जमुना के तट पर लगातार आपके स्वर में और आपके पिताजी के गाए भजन गूंजते रहते हैं, लेकिन आज जगत में बहुत ही कोलाहल है। जो संस्कार भजनों के हमें मिले वो नई पीढ़ी से नदारद है। ऐसे में भक्ति संगीत की ये रसधारा कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, आप हमें बताएं। और कबीर के अनगिनत भजन आपने गाए हैं, तो कबीर के भजन के जरिए आप क्या संदेश देंगे सभी श्रोताओं को?
2: कबीर ने जो जो लिखा है, जो देखा है वो लिखा है। उन्होंने हमेशा समाज की सच्चाइयों को अपने भजन के माध्यम से उतारा है। तो कबीर जैसे दार्शनिक दूसरे नहीं है, कबीर जैसा यथार्थ बात करने वाला कोई नहीं है, सच्ची बात करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम कबीर को केवल कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी मानते हैं।
1: जी जी।
2: कुछ भजन हैं जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, जन्म तेरा बात ही बीत गयो, मत कर मोह तू, न जाने कितने भजन हैं। मैं आपको कबीरदास जी का एक भजन सुनाता हूँ।
1: जी।

इस भजन के माध्यम से कबीर ये समझा रहे हैं कि अलग अलग अवस्था में मनुष्य अलग अलग काम करता है, एक काम करना भूल जाता है, भगवान का नाम लेना। तो इसके भी कुछ कारण होंगे क्यों भूल जाता है। उन्हीं कारणों को समझाया है कि मनुष्य क्यों भूल जाता है भगवान का नाम लेना।

0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें। अनूप जी, आपकी भक्ति रचनाओं में जीवन दर्शन समाहित है और वो दर्शन जैसे मन में समा जाता है। तो इस वक्त कोई ऐसा भजन याद आ रहा है आपको, हमारे श्रोताओं को सुनाएं कुछ पंक्तियां?
1: कबीर को सुनाता हूं
0: जी।

0: तो श्रोताओं, कबीर की इस रचना में हम डूब गए थे, खोसे गए थे। ऐसी लागी लगन, अनूप जलोटा से बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी नवी कड़ी। अब आज की ये कड़ी बस यहीं तक।
1: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह एफएम रेडियो लीक सिटी सवेर के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बरखा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

हमारी अगली पेशकश मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने, इस फिल्म से भरत व्यास हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी वीर जी शाह।

0: सुनिए एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
5: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज़ों में बाप बेटे इस फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है मदन मोहन ने।

0: आज इतवार के
1: मीठे बाल जलाने वाली मेरी नींद चुराने वाली मेरे दिल की तरफ से मैंने मैंने
0: ओ मेरे दिल में आने वाले मुझको प्यार सिखाने वाले मेरे दिल की तरफ से मैनी मैनी मैनी मैनी थैंक्स ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का। तुरंत

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए सुरैया मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और हुसन लाल भगत राम का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम क्षमा परवाना।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गाना। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे,
1: अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: के दांत लीक करूं तो मुझको जेल भेज दो, ढूंढने में क्या है ये जवाब थानेदार।

0: अरे तेरे की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ। किक किक किक किक। ट्रेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे, सुलोचना कदम और साथियों की आवाज़ों में सुरंग फिल्म से शिवन रिज्वी के हैं बोल और तर्ज बनाई है पंडित शिवराम कृष्ण ने।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन हम है राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

लीजिए अब सुनिए हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में हाउस नंबर 44। इस फिल्म का गाना साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में बारादरी फिल्म का गाना। खुमार बाराबंकवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं शौकत दहलवी नाशाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाय यार, अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार, अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
7: बन गया बजट?
6: हाँ,
7: 5,000 बच गए।
6: तो नई साड़ी ले ले।
7: ना,
6: पिछले महीने तो ली थी।
7: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
6: बढ़िया, जाओ भाई।
3: RBI कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

अगला गाना हमने लिया है यास्मीन फिल्म से, इसे गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने, लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश हेमंत कुमार गीता दत्त और ठाकुर की आवाज़ों में मुनीम जी फिल्म से। साहिर लुधियानवी हैं गीतकार और संगीतकार हैं एस डी बर्मन।

0: फिर गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।
1: पामा पधा पगा सपा, दिल की उमंग है जवान, गाइए।
2: दिल की उमंग है जवान।
0: बहुत

0: मजा आ रहा है।
1: इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

FM बैंड 101.9 MHz पर, यह है FM रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: सबका बिजली बिल जीरो आने लगा तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर

0: सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: India is accelerating towards universal health coverage.
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: Pandemic preparedness and emergency responses.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
7: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC 132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
8: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट

0: रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित

0: उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: that we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 8:30 हुए हैं। ये समय है हमारे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन के कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का।

0: हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, कल की थकान को पीछे छोड़ जाती है। मुस्कुराकर शुरू करो अपना हर एक दिन, क्योंकि खुशियाँ भी आपके पास ही आती है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलिए खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम का आगाज। इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त अनीता, और मेरे साथ हैं
0: आंचल।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: और साथ ही श्रोताओं को बता दें आंचल कि आज मिड वीक वाइब्स में क्या है खास।
0: बिल्कुल, आज की मिड वीक वाइब्स में हम बात करेंगे टुडेज डायरी में विश्व मधुमक्खी दिवस पर, साथ ही देंगे सुमित्रा नंदन पंत जयंती की जानकारी, आईपीएल की अपडेट होगी और स्थानीय खबरों की जानकारी हम देंगे। साथ ही प्रेरणा क्षेत्र में हम बात करेंगे गीता गोपीनाथ की,
1: और रोचक तत्व में हम बात करेंगे रेडियो प्रसारण सेवाओं के इतिहास की। और आज है आंचल बुधवार, तो हम अपने श्रोताओं को भी हमसे जुड़ने का मौका देंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए श्रोता संवाद में। और आपको हमें बताना होगा कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, रेडियो से जुड़ी कोई जानकारी हो या रेडियो आप कितने सालों से सुन रहे हैं, रेडियो सुनना आपको कैसा लगता है, ये सारी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं 9462697568 पर, और हम आपके मैसेज पढ़कर सुनाएंगे 9:10 पर।
0: बिल्कुल,

0: अंधकार की गुहा सरीखी, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रौदन। ये पंक्तियां लिखने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत, जो हिंदी साहित्य के विलक्षण युग प्रवर्तक और प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं।
1: बिल्कुल, हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत। 20 मई वर्ष 1900 में कोसानी उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम था गुसाई दत्त। स्लेटी छतों वाले पहाड़ी घर, आंगन के सामने आड़ू खुबानी के पेड़, पक्षियों का कलरव, सरपेली पगडंडिया, बांझ, बुराश और चीड़ के पेड़ों की बयार और नीचे दूर तक मखमली कालीन सी पसरी कत्यूर घाटी और उसके ऊपर हिमालय के उत्तंग शिखरों और दादी से सुनी कहानियाँ और शाम की आरती की स्वर लहरियों ने इन्हें बचपन से ही कवि हृदय बना दिया था। और यही वजह थी कि इनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम, सौंदर्य, मानवता और आध्यात्मिकता का सुंदर चित्रण मिलता था।
0: सुमित्रा नंदन पंत ने 7 साल की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताओं में प्रकृति के अलावा नारी चेतना, ग्रामीण जीवन और इनकी विसंगियता का मार्मिक चित्रण भी देखने को मिलता है। इनका लेखन इतना प्रभावशाली था कि 18 साल की उम्र में हिंदी साहित्य में अपनी विशिष्ट इन्होंने पहचान बनाई और लेखन शुरू कर दिया। तो इनका जो लेखन था वो 3 चरणों में था। पहला था छायावाद, जिसमें इनकी रचना है पल्लव, इसको छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। और इसके अलावा इनकी कृतियाँ थी उच्छ्वास, ग्रंथि वीणा और गुंजन।
1: बिल्कुल, इनके पुरस्कारों की अगर बात करें तो वर्ष 1968 में इन्हें इनकी रचना चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें अलंकृत किया गया। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि से भी नवाजा गया।
0: और छायावाद के अलावा प्रगतिवादी चरण में समाजवाद और यथार्थ का काल भी रहा है, जिसमें वह प्रकृति से निकलकर धरती के यथार्थ, किसानों और मजदूरों की पीड़ा से जुड़े। इसके बाद जीवन के अंतिम चरण में पंत जी की मुलाकात महर्षि अरविंद के पौंडिचेरी में हुई थी और उनसे प्रभावित होकर उनकी कविताओं में आध्यात्मिकता, चेतना और विश्व कल्याण के स्वर गूंजने लगे थे।
1: छायावाद के सुंदर दीप जिनसे जग उजियारा था, हिंदी साहित्य के आकाश में पंत जी सितारा था।
0: पंत जी आकाशवाणी के मुख्य परामर्शदाता के पद पर भी रहे। 28 दिसंबर 1977 को ये दुनिया छोड़ गए।
1: हिंदी साहित्य में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिन मनाया जाता है।

0: और अब बात करते हैं स्थानीय सूचनाओं की। तो पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से बागोर की हवेली स्थित ग्राफिक स्टूडियो में मंगलवार से 7 दिवसीय एटिंग और सेरीग्राफी कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में उदयपुर और नादवारा के विभिन्न महाविद्यालयों के करीब 20 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्यशाला का समय है हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबर में एक खबर ये भी है कि लेक सिटी में दूसरी बार राजस्थान ट्रेवल ट्रेड फेयर होगा। इस बार यह आयोजन अगले साल 9, 10 और 11 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें 250 से ज़्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे और देश भर से 1500 से ज़्यादा ट्रेवल एजेंट हिस्सा लेंगे। फेयर में शामिल होने वाले देश भर के ट्रेवल एजेंट यहाँ की शाही शादियों, मेहमान नवाजी, हेरिटेज और पर्यटन स्थलों से रूबरू होंगे। इससे विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

0: और आंचल देखो इस ट्यून के बजते ही हमारी श्रोता समझ जाते हैं कि अब हम उन्हें आईपीएल की जानकारी देने वाले हैं, तो बात करेंगे कल के मैच की।
1: बिल्कुल अनीता, कल का जो मुकाबला था जयपुर में घरेलू मैदान पर मिली सीजन की पहली जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स ने अपनी प्लेऑफ की उम्मीदें मजबूत कर ली है। मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 7 विकेट से मात दी है। यह रॉयल्स की लीग स्टेज के 13 मैचों में से 7वीं जीत रही और वह अंक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले खेलते हुए लखनऊ ने 220 रन बनाए थे, राजस्थान ने 3 विकेट खोकर लक्ष्य को पूरा कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच वैभव सूर्यवंशी ने 93 रनों की पारी खेली और पारी में 7 चौके और 10 छक्के जमाए।
0: और आज के मैच की बात करें तो आईपीएल अब अपने रोमांचक दौर में पहुंच गया है। आज का मैच भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच ईडन गार्डन्स में हाई वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा और आज देखने वाली बात यह रहेगी कि जीत किसके नाम होती है।

0: अनिता, कार्यक्रम में दिन विशेष की बात करें तो आज है 20 मई और आज के दिन को हर वर्ष मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में। यह दिन मधुमक्खियों के महत्व और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और इस पृथ्वी पर कई तरह के छोटे बड़े जीव पाए जाते हैं और हर किसी का अपना महत्व होता है, खासियत होती है। एक छोटा सा कीट मधुमक्खी जिसका बनाया हुआ शहद हम सभी ने चखा होगा, आपने भी देखा होगा, चखा भी होगा। तो आज का दिन जो 20 मई का दुनिया भर में मनाया जाता है, और 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन स्लोवेनिया के एंटोना जांसा का जन्मदिन है। इन्हें आधुनिक मधुमक्खी पालन का प्रणेता भी माना जाता है। उन्होंने मधुमक्खियों की क्षमताओं और उनकी कड़ी मेहनत को सराहना की और दुनिया के सामने की।
0: बिल्कुल, मधुमक्खियां फूलों से पराग एकत्र करके एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचाती है, जिससे फल और बीज बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। लगभग 70-75% फसलें भी मधुमक्खियों पर ही निर्भर होती है। ये जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा शहद, मोम और अन्य उपयोगी पदार्थ हमें मधुमक्खियों से ही प्राप्त होते हैं।
1: और इस दिन की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में की गई थी और 20 मई 2018 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था।
0: वनों की कटाई, फूलों की कमी, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, कीटनाशकों और रसायनों के अधिक उपयोग से आज इनका जीवन संकट में है।
1: कृषि क्षेत्र में मधुमक्खियां फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ाकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में अरबों डॉलर का योगदान देती हैं, और हर साल इस दिवस को एक थीम के साथ मनाया जाता है। तो 2026 की थीम है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं। यह थीम उन जीवों की रक्षा करने, उनके प्राकृतिक आवास को बचाने और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकने की आवश्यकता पर जोर देती है।
0: मधुमक्खियां हमारे पर्यावरण और जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो खाद्य उत्पादन और प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए हम सभी को मिलकर मधुमक्खियों की रक्षा करनी और उनके सुरक्षित भविष्य के लिए प्रयास करने हैं, क्योंकि मधुमक्खियों को बचाना मानव जीवन को बचाना है।

0: श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी उदयपुर और एफएम रेडियो लेक सिटी पर एक साथ। रास्ते कठिन हो पर हार मत मानो, हर दिन को नई उम्मीद से पहचानो, कदम उठाओ और हिम्मत जगाओ, सपनों की ऊंचाई तक खुद को ले जाओ।
1: हमारे देश में वाकई में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया और एक मुकाम हासिल किया, महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। उन्हीं में से एक हैं भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो वैश्विक अर्थशास्त्र और नीति निर्धारण के क्षेत्र में दुनिया का एक बेहद प्रतिष्ठित नाम है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और बाद में पहली उप प्रबंधक निदेशक बनी।
0: बिल्कुल, इनका जन्म भारत में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत से ही प्राप्त की। ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होनहार थी और अर्थशास्त्र विषय में इनकी विशेष रुचि रही
1: और उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया। इकोनॉमिक्स में एमए करने के बाद अमेरिका में अर्थशास्त्र में पीएचडी की। पीएचडी के बाद 2005 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी और 2010 में वे वहां प्रोफेसर बन गई। हार्वर्ड में अर्थशास्त्र विभाग के इतिहास में स्थायी प्रोफेसर बनने वाली तीसरी महिला थी।
0: बिल्कुल, कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब गीता गोपीनाथ ने अपनी नीतियों और सुझाव से कई देशों की दिशाओं दिखाई। इनके कार्यों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: 2019 में उन्हें IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। इस पद

0: पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली और रघुराम राजन के बाद दूसरी भारतीय महिला बनी। कोरोना महामारी के बाद इन्होंने बहुत सारे अपने काम किए।
1: बिल्कुल, यह न केवल उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व की बात रही है। गीता गोपीनाथ के उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनके सम्मान की बात करें तो भारत सरकार का उच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान से ये सम्मानित है। इसके अलावा टॉप ग्लोबल थिंकर और फाइनेंशियल टाइम्स से भी ये अलंकृत है।
0: वैश्विक आर्थिक सेवा और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारण के क्षेत्र में गीता गोपीनाथ का योगदान ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रहा। उन्होंने न केवल दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शीर्ष पदों पर रहकर वैश्विक आर्थिक संगठनों का समाधान किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और मैक्रो इकोनॉमिक्स में उनके सिद्धांतों को भी एक नई दिशा दी।
1: गीता गोपीनाथ ने अपने ज्ञान, मेहनत और समर्पण से यह साबित कर दिया कि सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प और लगन आवश्यक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हम भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ये आज लाखों युवाओं और विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है।
0: 2022 में उनकी क्षमताओं को देखते हुए IMF ने उन्हें प्रथम उप प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया। 2025 तक उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए। एक वैश्विक अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का शोध पूरी दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक रहा। वर्तमान में IMF से विदा लेने के बाद वो वापस अकादमिक क्षेत्र में लौट आई और अभी वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठित ग्रेगरी एंड अनिया कॉफी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं।

0: तो हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि आज श्रोता संवाद में आपको हमें बताना होगा कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम आपको कैसा लगा, रेडियो से जुड़ी जानकारी या रेडियो आप कितने सालों से सुन रहे हैं और रेडियो सुनना आपको कैसा लगता है, ये आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 9462697568 पर, और आपके मैसेज हम पढ़ेंगे 9:10 पर।
1: इसी के साथ अनिता, घड़ी की ओर देखे तो समय हुआ हिंदी में प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धंबोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 1 एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के एसपी बदले गए हैं। एडीजी लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं एडीजी हवा सिंह घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता भंडार और क्रय

0: विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं के प्रस्तावित हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तंबाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तंबाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला।

0: और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी उदयपुर है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। पुनः स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में।
2: और हम

0: या अपने रेडियो सुनने के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता सकते हैं, रेडियो के इतिहास की जानकारी अगर देना चाहते हैं तो कीजिए मैसेज 9462697568 पर।
1: बिल्कुल।

0: नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से, जिसे सुनना बहुत ही आसान हो चुका है। रेडियो को अब आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं और अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स आप सुनते हैं अपने मोबाइल पर भी। अब हर समय रेडियो की ज़रूरत नहीं है कि जैसे पहले के समय में हमेशा रेडियो कभी साइकिल पर कभी स्कूटर पर हुआ करता था, अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आज रेडियो एंटीना और ट्रांसमीटर से आगे निकल चुका है। एक समय था जब लोग हर वक्त ट्रांजिस्टर को अपने साथ रखते थे, है ना, आपने भी देखा होगा अपने बचपन में।
1: बिल्कुल।
0: तो आज रोचक तथ्य में हम बात करेंगे रेडियो प्रसारण सेवाओं के इतिहास की।
1: बिल्कुल, रेडियो प्रसारण सेवा संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसने सुरक्षा, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन को लोगों तक पहुंचाने में क्रांति ला दी। रेडियो की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में हुई जब वैज्ञानिकों ने बिना तार यानी वायरलेस संदेश भेजने की तकनीक विकसित की। वर्ष 1895 में पहली बार जी मार्कोनी ने सफलतापूर्वक वायरलेस संकेत भेजे। यहीं से रेडियो के आविष्कार की शुरुआत मानी जाती है। इन्होंने समुद्र के पार भी संदेश भेजने में सफलता पाई है।
0: रेडियो प्रसारण का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास में संचार क्रांति का एक स्वर्णिम अध्याय है। रेडियो ने दुनिया को एक सूत्र में पिरोने और सूचनाओं को तुरंत सभी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: पहले रेडियो प्रसारण की अगर बात करें तो वर्ष 1920 में अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में पहला

0: रेडियो प्रसारण हुआ था, इससे समाचार और चुनाव परिणाम सुनाए गए थे। और बात करें भारत में रेडियो प्रसारण सेवा की, तो वर्ष 1927 में रेडियो सेवा शुरू हुई और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की स्थापना हुई।
1: पहले विश्व युद्ध के बाद रेडियो आम जनता के मनोरंजन का साधन बना। पहला कॉमर्शियल स्टेशन अमेरिका के पिट्सबर्ग में KDKA नाम से दुनिया का पहला व्यावसायिक रेडियो स्टेशन शुरू हुआ।
0: 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की आकाशवाणी की स्थापना हुई और 1957 में इस आकाशवाणी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। रेडियो ने स्वतंत्रता संग्राम और बाद में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: 1922 में BBC की शुरुआत हुई, जिसने दुनिया भर में समाचार और सूचना प्रसारण के ऊंचे मानक स्थापित किए। 1930 में निजी कंपनियों के बंद होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में लिया और भारतीय राज्य प्रसारण सेवा की शुरुआत की। और इस 1957 में आधिकारिक तौर पर ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी नाम दिया गया।
0: इस प्रकार रेडियो की शुरुआत एक छोटी वैज्ञानिक खोज से हुई, जो आज पूरे विश्व में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी है। रेडियो ने दुनिया को जोड़ा और आवाज को हर जगह पहुंचाया।
1: आजादी के समय भारत में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुचिल्लापल्ली और लखनऊ। विविध भारती की शुरुआत 1957 में हुई थी, जब श्रीलंका के रेडियो सिलोन में फिल्मी गीतों में भारतीय श्रोताओं को दीवाना बनाया। तब उसके बाद मुकाबले AIR ने विविध भारती शुरू की, जिसकी लोकप्रियता आज भी बरकरार है। अब बात करते हैं FM की शुरुआत की, तो 1977 में चेन्नई में पहला FM रेडियो सेवा शुरू की गई। उसके बाद 2000 के दशक में सरकार ने निजी कंपनियों को FM लाइसेंस दिए और कई सारे प्राइवेट FM शुरू हुए। FM चैनल आज के हर उम्र की पहली पसंद बना हुआ है। आज डिजिटल दौर के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में गाड़ियों में सफर करने वाले लोगों के लिए रेडियो आज भी सूचना और मनोरंजन का एक बेहतरीन साथी बना हुआ है।

0: अनिता श्रोता संवाद में हमारे साथ जुड़े हैं विक्रम जी। इन्होंने लिखा है, रेडियो सुनना मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सन 2000 से क्रिकेट कमेंट्री के साथ धीरे धीरे आकाशवाणी उदयपुर से इन्हें जुड़ने का मौका मिला और सुनना पूरा प्रतिदिन इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। आज के डिजिटल युग में भी इनको सुनने का मजा कुछ और है, क्योंकि न्यूज़ ऑन एयर ऐप जो अवेलेबल है।
1: बिल्कुल सही बात है, और उसके जरिए आप मोबाइल के जरिए कभी भी आप रेडियो सुन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स का आनंद ले सकते हैं। और अगला संदेश हम तक पहुंचा है कमल सुहालका जी का, और इन्होंने लिखा है कि मधुमक्खी से संबंधित जो जानकारी दी वो इन्हें काफ़ी नई लगी और बहुत अच्छी लगी। इससे शहद प्राप्त होता है जो हम भी उसका स्वाद चखते हैं। सुप्रभात के साथ इनका संदेश हम तक पहुँचा है। तो कमल सुहालका जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को इतने ध्यान से सुनते हैं और हमें मैसेज किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

0: चलिए श्रोता संवाद में एक और हम तक मैसेज पहुंचा है सुशील यादव, रेणु यादव का, और ये लिखते हैं कि हमें हमेशा आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, रेडियो सुनना हमें विरासत में मिला है और ये रेडियो में बहुत कुछ सिखाता है। रेडियो एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसमें सूचना, ज्ञान, शिक्षा, विज्ञान, कला, संगीत, सांस्कृतिक मनोरंजन, ये सभी तरह की जानकारियाँ हमें रेडियो के माध्यम से ही मिलती हैं। हमारी दिनचर्या की शुरुआत भी रेडियो से ही होती है और हमें रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपके सभी प्रोग्राम्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो सुशील यादव जी, रेणु यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बिल्कुल, और एक मैसेज हम तक आया है देवर्ष खत्री जो कि 8 वर्ष के हैं, इनका मैसेज है कि आपके द्वारा समय समय पर दी गई जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होती है।
0: और एक और मैसेज हम तक पहुंचा है और इन्होंने कहा है कि गुड मॉर्निंग के साथ इनका जो मैसेज हम तक पहुंचा है और उन्होंने लिखा है कि हमें सारे प्रोग्राम्स आपके अच्छे लगते हैं, आज का प्रोग्राम भी हमें बहुत अच्छा लगा है, और ये संदेश हम तक पहुंचा है किरण कुमावत जी का, तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को सुना और हमें मैसेज किए। और अब चलते चलते अपने श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त। तो आज के प्रोग्राम में मैं थी आपके साथ अनीता और मेरे साथ थी
1: आंचल।
0: दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's cool as fuck.

बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये एफएम रेडियो लेक सिटी, हमारी मॉर्निंग लोकल विंडो में आप सभी का बहुत सारा स्वागत। आज के सफर में मैं हूं आपके साथ अनीता। सबसे पहले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी और आगाज इस गीत के साथ।

आप एंजॉय कर रहे हैं हमारी मॉर्निंग लोकल विंडो के प्रोग्राम्स। 10 बजे आप सुनेंगे भूली हुई यादें, 11 बजे कुछ बातें कुछ गीत, 11:30 बजे राजस्थानी लोक गीतों का कार्यक्रम होगा गोकड़ा, और 12:05 से आप एंजॉय करेंगे विविध भारतीय मुंबई के प्रसारण। तो सुनते रहिए FM रेडियो लेक सिटी।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: और अब बात करते हैं मौसम की, तो भीषण गर्मी का असर अब रोज़ देखने को मिल रहा है। गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं, जैसे ही तापमान 40-41 के आसपास पहुंचता है तो असर आम जनता पर दिखाई देने लगता है। दोपहर के समय अब सड़कें सूनी नज़र आती हैं। गर्मी का असर हॉस्पिटल में भी देखा जा रहा है। तेज़ धूप का असर सबसे ज़्यादा स्किन पर पड़ता है। हम पानी का तो ध्यान रख लेते हैं, लेकिन यदि धूप में जाना पड़े तो शरीर का जो हिस्सा खुला रहता है या पसीना जिसको ज़्यादा आता है, उनको फंगल इन्फेक्शन, सनबर्न, खुजली, टैनिंग जैसे प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, सफाई का विशेष ध्यान रखें। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और नुकसानदेह होती है, तो ऐसे में घर से बाहर न निकलें। यदि निकलना मजबूरी है, जाना ही है, तो शरीर को कवर करके निकलें। और तापमान की बात करें तो कल का अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लीग सिटी और एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि भारत के लोक सेवा प्रसारण आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल आकाशवाणी ने वॉकथॉन का आयोजन किया। यह फतेह सागर ओवरफ्लो पॉइंट से शुरू होकर यूआईटी सर्कल, पंचवटी सर्कल होते हुए मोता पार्क स्थित आकाशवाणी कार्यालय में संपन्न हुई। 90 वर्ष की यात्रा में आकाशवाणी, स्वतंत्रता आंदोलन, औद्योगिक हरित श्वेत क्रांति, 1971 की जंग और युद्ध से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण का साक्षी रहा है। इसी समृद्ध विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष भर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की जा रही है। इसी क्रम में 15 मई को संगीत संध्या का भी आयोजन हुआ था और वॉकथॉन भी इसी की कड़ी का एक हिस्सा है।

भूली हुई। गुड मॉर्निंग लेक सिटी प्रोग्राम बस यहीं तक। आपने ट्यून किया एफएम रेडियो लेक सिटी। सवेरे के 10 बजने वाले हैं और प्रोग्राम है भूली हुई यादें। इस प्रोग्राम में आज हम सफ़र तय करेंगे 1981 का, जिसमें कई सुपरहिट फिल्में आई थी और सबसे पहले बात फिल्म लव स्टोरी की।

भूली हुई यादें, इस प्रोग्राम में आज हम सफर तय कर रहे हैं 1981 का। और बात सबसे पहले फिल्म लव स्टोरी की, जो 1981 में बनी एक प्रेम कहानी है। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन राजेंद्र कुमार ने किया था।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: 1981 की एक बेहतरीन फिल्म लव स्टोरी, जिसका निर्माण निर्देशन राजेंद्र कुमार ने किया था और इनके पुत्र कुमार गौरव और विजेता पंडित की ये पहली फिल्म थी। दोनों की ये सुपरहिट फिल्म रही और इसकी फिल्म की गीत भी काफ़ी प्रसिद्ध हुए और इस फिल्म को हिंदी फिल्मों की पथ जनक भी माना जाता है।

लव स्टोरी जिसके सभी गीत लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत राहुल देव बर्मन का रहा, आवाजें मुख्य तौर पर अमित कुमार और लता मंगेशकर की रही और उनके साथ आशा भोसले भी थी। आजा तेरी याद आई इस गीत के लिए अमित कुमार को फिल्म फेयर का पुरस्कार भी दिया गया।

लव स्टोरी के मुख्य कलाकारों की बात करें तो कुमार गौरव विजेता पंडित के साथ राजेंद्र कुमार भी थे, डैनी डंग, जो जप्पा, विद्या सिन्हा, अमजद खान और बॉनी बैनर्जी भी थे।

भूली हुई यादें। इस प्रोग्राम में आज हम सफ़र तय कर रहे हैं 1981 का, और अब बात करेंगे 1981 की एक और सुपरहिट फिल्म क्रांति की।

1981 में बनी एक भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म क्रांति, जिसका निर्माण, संपादन, संवाद और निर्देशन मनोज कुमार ने किया, जबकि कहानी और पटकथा सलीम जावेद ने लिखी।

क्रांति फिल्म में मुख्य रूप से दिलीप कुमार ने भूमिका निभाई और साथ ही मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी और परवीन बॉबी ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म 4 साल के अंतराल के बाद दिलीप कुमार की वापसी की प्रतीक थी। 1981 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म बनी।

क्रांति फिल्म के मुख्य कलाकारों की अगर बात की जाए तो इस फिल्म में थे दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, शशिकला, प्रीति गांगुली, सारिका, बीरबल, पेंटल, भगवान मनमोहन, टॉम अल्टर, धीरज कुमार और गुरबचन सिंह।

क्रांति फिल्म के अगर संगीत की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया और मनोज कुमार संतोष आनंद ने गीत लिखे। मुख्य आवाजें रहीं लता मंगेशकर, नितिन मुकेश, महेंद्र कुमार, किशोर कुमार और मीनू पुरुषोत्तम की, और साथ ही कुछ गीत शैलेंद्र सिंह और मन्ना डे ने भी गाए।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
2: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
1: अरे वही अपना 60 रुपया।
2: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
1: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
2: और दूसरा?
1: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
2: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
1: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
4: हर लेन देन अब है आसान।

भूली हुई यादें। इस प्रोग्राम में आज हम सफ़र तय कर रहे हैं 1981 का, और अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म एक दूजे के गीत।

0: तेलुगु फिल्म का रीमेक है। फिल्म जारी होने पर सुपरहिट रही और इस फिल्म के गीत भी काफी पसंद किए गए।
1: बीच में क्यों रोक दी?
2: तुम्हारा साथ ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
1: ओह माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
2: हिंदी कविता है ना?
1: हाँ।
2: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
1: तुम और हिंदी कविता?
2: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बेनहर।

0: ஓஹோ அப்படியா?
1: ஜெஸ் சப் சமஜ் கயா.
2: उन्नीस सौ इक्यासी की एक बेहतरीन फिल्म एक दूजे के लिए, जो हिंदी भाषा की दुखांत प्रेम कहानी फिल्म है। इसका निर्देशन के बाला चंदर ने किया और मुख्य कलाकार कमल हसन, रति हुग्नी उत्री हैं। इसका निर्देशन अपनी

0: चोर
1: भूल गए
2: जान मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जान मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडलबाज
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम मेरे जीवन साथी प्यार किए जा
1: चाचा
2: जवानी दीवानी खूबसूरत सिद्धि पड़ोसन सत्यम शिव

0: इश्क इश्क इश्क
1: रफ मास्टर
0: रास्ते हैं प्यार के चलते चलते मेरे हम सफर हम सफर दिल तेरा दीवाना दीवाना मस्ताना चलिया अनजाना
1: पगला कहीं का

0: 1854 से प्राप्त की जा सकती है।
1: एक दूजे के लिए 1981 की एक बेहतरीन फिल्म जिसको कि 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और SP बाला सुब्रमण्यम की भी ये पहली फिल्म थी और इस फिल्म में गायकी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

एक दूजे के लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार रहे कमल हसन, रति अग्निहोत्री, माधवी, रजा मुराद, अरविंद देशपांडे, राकेश बेदी, शुभा खुटे, मधुमालिनी असरानी, सत्येंद्र कपूर और सुनील थापा। गीत लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था सभी गीतों को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी एट 90
1: भूली हुई यादें प्रोग्राम बस यहीं तक। यह है 101.9 FM रेडियो लेक सिटी और अब प्रोग्राम कुछ बातें ही कुछ गीत। दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो दिल की नज़दीकियों की होती है। दिल के रिश्ते तो किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो न जाने कितनों से होती है।

कुछ बातें कुछ गीत, वाकई में बात करना एक कला है। ये बातें ही तो होती हैं जिनसे कोई या तो दिल में उतरता है या कोई दिल से उतर जाता है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम सभी की बातें बहुत होती हैं, बहुत से लोगों के साथ होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे बिन कहे ही सामने वाला समझ जाए। ऐसे ही तो सच्चे और अच्छे रिश्ते होते हैं।

हर किसी की यही इच्छा होती है कि जो उनके दिल के करीब होते हैं वो हमेशा उनके साथ रहें, कभी उनका साथ और उनका हाथ न छूटे, क्योंकि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके दिल की बात समझ पाते हैं।

कई बार ऐसा होता है कि बातों बातों में, हंसी मजाक में कई बार हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसका मतलब गलत निकाल लिया जाता है, लेकिन गलत उसका मतलब होता नहीं है। तो मजाक भी वहीं करें जहां कोई मजाक बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा लगे तो मान लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी में आने से बात बन जाती है।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा। राजस्थानी गीतारो कार्यक्रम गोखड़ा लेने मुँह हाजिर हूँ। आप रेडियो दोस्त विद्या सभा ने खमा गणेशा रंगीलो मारो राजस्थान रंगीली मारी बाता है। और बात करा अटारी संस्कृति री तो या संस्कृति बतावे अटारा मन भावन लोकगीत तो हुणा कार्यक्रम रो पहलो लोकगीत।

रीति रिवाज रो खजानो है आपड़ो राजस्थान। अटारी संस्कृति खान पान हर पल में आपने राजस्थान री संस्कृति बसे है सा। और बात भी अटारा पारंपरिक गीतारी तो हुणा यो अगलो लोकगीत आंचल भटरी आवाज में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM बैंड 101.9 MHz पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और आप सुन रहे हो राजस्थानी लोकगीतारो कार्यक्रम गोखड़ा सा। अगलो लोकगीत होना मनीषा अग्रवाल और साथियारी आवाजा में।

0: અણી લોકગીત રે લારી રાજસ્થાની ગીતારો કાર્યક્રમ ગોખડા બસ અઠે તક અભે અણી કાર્યક્રમો ઇજાજત દો આપરી રેડિયો દોસ્ત વિદ્યાને રામ રામ સા। अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी गीतों का कार्यक्रम गोखड़ा एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कॉलोसियम का

0: मुलाकात किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपोलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशकों से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई, जहां उन्होंने शी जिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। अभियान के दौरान पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आगे की जाँच जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.35% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 75,157 पर जबकि निफ्टी 23,611 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में शबाब फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायनी है गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गंवार फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे नौशाद। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुने।

अभी आप सुन रहे थे अजीज कश्मीरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाजें थी आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना। फिल्म का नाम तुम सा नहीं देखा।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम रागिनी।

0: तुमसे प्यार हूँ।
1: छोटी रे
2: मैं बंगाली ठोकरा करूँ प्यार को नमस्कारम।
0: मैं मदर

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में राम और श्याम फिल्म का गाना। शकील बदायनी थे गीतकार, संगीतकार थे नौशाद। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायनी और नौशाद की जोड़ी का ही लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म का नाम मदर इंडिया।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूँ।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। विविध भारती पर हमने सुरीला सफर की पोस्ट अब से 2 घंटे पहले ही जारी कर दी थी और उस पोस्ट में आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का टेक्स्ट जारी किया गया है। इस इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज के गाने कौन कौन से हो सकते हैं। जब कमेंट बॉक्स देखा तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं जिसमें आप सभी ने लगाया है गानों का अंदाजा। एक बार मैं टेक्स्ट आपको पढ़कर सुना देता हूं। इतनी गर्मी पर गुलमोहर का देखो,

कैसे मुस्कुरा रहा है। मन करता है इसे गले लगा लें। पर्वतों के पेड़ों को कभी गले लगाएं, कभी उनसे अपने जिया की पीर कहें। जब शाम हो तो निकलें बाहर, किसी नदी किसी सागर के किनारे, पंछियों की चहक फूलों की महक महसूस करें, आसमान को निहारें। कभी कभी ऐसा भी तो करें, कितना खूबसूरत होगा तब जीवन। ये है आज की इबारत। और इस इबारत में जैसे बहुत सारे अलग अलग शब्द अलग अलग गानों की तरफ इशारा कर रहे हैं, पर एक शब्द ऐसा है जो केवल एक ही गाने की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल गुलमोहर शब्द पर फिल्म उद्योग में कम से कम दो गाने तो जरूरी तौर पर बने हैं, लेकिन एक गाना है जो आप सभी के जहन में आया, उसी से कार्यक्रम का आगाज करेंगे। और इस गाने के बाद आप सभी के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिर एक झलक गुलमोहर शब्द से दूसरे गाने की भी सुनाएंगे।

गुलजार साहब के बोल, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमुहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमुहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये आशा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदियां पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक, ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ऐ गुलबदन फूलों की महक। उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से और फिर और भी, अरे बाप रे, इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुस जी, गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़, पहाड़, नदी, पंछी, सागर, फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

ये गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना, मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहाँ थी? मैं आपको बताता हूं, दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूँ। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं, नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज़्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है, इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप ज़मीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत, सागर, किनारा, गुलमोहर, नदी, पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाज़ा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती हैं कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने गुलाब, जूही, रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज़्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता हैं जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास, गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। ये फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा, बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है

जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी, ये भी बता सकते हैं आप।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई, सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं, अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी, देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से

शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं, गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूँ और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहाँ बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी हैं जो गंगा नदी के किनारे रहती हैं और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधु मालती गुड़हल और बारामसी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

0: नदिया से दरिया।
1: लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या प्यारा है। और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है। लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाएगा।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: का जमाना हमारा,
1: ये हवा ये नदी का किनारा,
0: चांद तारों का रंगी इशारा,
2: कह रहा है बेखबर हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये हवा ये नदी का किनारा।
3: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाए। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी, और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सूख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहाँ हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोंटाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ पांच गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता हैं जो कहती हैं कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहाँ जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुंदर का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेलघाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है। और दिल्ली के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: अपने
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है।

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियाँ, ये समंदर, ये खाड़ियाँ, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के नज़ारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

0: हो।
1: अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आसमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीकी हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना, बंदिनी फिल्म का गीत, और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है, दो नदियों के बीच बसा है, महानदी, और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स, सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि उन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है, लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

दोस्तों ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है, जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता एंटोन जानसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

0: खड़ूस।
1: सौ में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की, अपना ये मान।

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थीं। उनकी जगहों पर आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं। और बड़े बुजुर्ग कह

0: लंको बता।
1: तूफानों से नहीं डरूंगा, हिम्मत से मैं निकल पड़ूंगा।
2: शाबाश, मीठी मीठी बातों से, मीठी मीठी मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
3: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी।

0: दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद

0: उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 40.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे

0: मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज़ में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओ पी नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
3: देखो जी बहार आई, गांवों में
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते
2: हैं, हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
2: आरती श्रीवास्तव।
1: आप सभी को हमारा
2: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
1: नमस्कार। कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
2: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
1: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
2: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
1: अच्छा,
2: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
1: अरे वाह,
2: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
1: क्या बात है, क्या बात है, जब भी चेहरे की चमक बता रही है।
2: बिल्कुल,
1: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी है।
2: बिल्कुल,
1: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
2: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
1: अच्छा,
2: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, उस तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे।
1: अच्छा,
2: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
1: अरे वाह,
2: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
1: अच्छा अच्छा,
2: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
1: आपके कहने का मतलब यह है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
2: बिल्कुल, और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए।
1: हाँ।
2: क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के, बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है।

0: जितना हाँ, पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
1: वो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ हैं, तीर्थ जगह हैं, स्थान हैं, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है, ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब, वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी, तो
0: बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है।
1: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
0: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखे, बहुत
1: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
0: हैं, तरह तरह के व्यंजन आपको खाने के लिए मिलते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है। मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
1: लेकिन फर्क होता है,
0: बिल्कुल फर्क होता है,
1: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, तो आप फील गुड महसूस कर रही हैं।
0: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
1: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
0: जी।
1: तो अब ये गीत सुन ले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ठीक हो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या क्या हैं।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियां।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे। साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता है वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए है ना
1: जी।
0: और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं। आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं।
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगे दाल पीठा, हमें खिलाएंगे भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती हुई नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी,
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की 1/3 खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पर ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। 1 पाउंड लगभग 1/2 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने लिखा।

0: मक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
1: बताइए तब
0: इतना
1: जाके
0: मेहनत।
1: हमें हाँ शुद्ध जो शहद है वो मिलता है
0: एक
1: ना?
0: बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियां उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने लिखा कि पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
0: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने
1: हाँ।
0: अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है।
0: जी,
1: और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं,
0: जी
1: जैसा अभी
0: बिल्कुल
1: तुमने शुरू में बताया भी था।
0: जी। और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा जिससे जैव विविधता में कमी आएगी और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखिए बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
0: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छाता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए।
1: हाँ।
0: बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब
1: हाँ,
0: तक
1: वो
0: काटी
1: करेगी। बिल्कुल,
0: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिये तरीके से इस चीज को लिखा है।
1: बिल्कुल सही कहा है।
0: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खी, आप कम दिखती है। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार

0: देती है, वो हमेशा बात हमें याद रहती है, और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: जारी ना बताऊं मैं तो नाम चित चोर का, जारी ना बताऊं मैं तो।
1: तो आरती
2: नाम नहीं बताने वाली हूँ चित्तौड़ का।
1: भाई नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल।
1: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
2: अरे बहुत
1: है ना। और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं ये साड़ियाँ। और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
2: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सकें।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
2: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को

0: बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है, बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
0: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में बनाने में
1: बहुत मुश्किल है।
0: तो इसमें एक या दो ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियाँ बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं, जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती है, और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का ही एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का, या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
0: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल, अलग लगती है तंचोई साड़ी और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है, जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं, जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो हैं, या विवाह समारोह के अवसर हैं, या त्योहार हैं हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी, अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को जानते हैं।
0: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे। आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई
1: और कोई आसान तरीका भी हो
0: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भाई भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों हैं? है ना। देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम हैं वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
1: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही

0: हूँ, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े हुए
1: जुड़े
0: हैं।
1: हैं। बहुत गहरी बात है आरती, ये अगर हम इसे समझ पाएं तो
0: जी
1: कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
0: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझ में आता है ना, जिस तरीके से जिस भाषा को हम जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और
0: जी
1: हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा,
0: हाँ जी
1: है ना। हम
0: अक्सर
1: मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे।
0: जी
1: लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की
0: बिल्कुल
1: शिक्षा ली।
0: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी
1: हाँ
0: सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है,
1: बिल्कुल।
0: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने
0: तो
1: देखा होगा
0: सीखना
1: कई
0: कभी मत
1: लोग
0: बंद करिए।
1: शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका
0: हाँ
1: जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
0: बिल्कुल
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हो, किसी भी भाषा को सीखते हो, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में
0: बिल्कुल
1: होने लगा है,
0: जी
1: जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है, और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
0: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये
1: हाँ
0: कभी मत मन में
1: बिल्कुल।
0: लेकर आइए।
1: आप जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
0: जी। और साथ ही जो वयस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है, यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित, जिंदा रहने के लिए जरूरी
1: क्या
0: है।
1: बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल
0: जी
1: डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं
0: जी
1: पीएचडी हूँ, है ना,
0: जी
1: मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है।
0: जी
1: डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी
0: बिल्कुल
1: नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
0: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप
1: हाँ,
0: खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव
0: जी
1: आता है वो कितना सुंदर होता है ना,
0: बिल्कुल
1: ये सबसे
0: बिल्कुल
1: बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती,
0: जी
1: प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या
0: जी
1: लिखती हैं
0: सबका नजरिया
1: ये
0: अलग होता
1: मायना
0: है
1: रखता
0: जी
1: है ना। तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है। और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसरों के द्वार आपको खोल सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वहां की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, वहां से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से,
1: हाँ
0: जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहां पे ब्रिज भाषा में
1: हाँ
0: क्योंकि
1: कितना
0: आप,
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगा
0: बिल्कुल
1: होगा।
0: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं ना, तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहा है,
1: हाँ, तो
0: तो
1: वो
0: इस वजह
1: अपने
0: से
1: करीब पाते हैं ना आपको
0: बिल्कुल
1: कि ये हमारे ही लोग हैं, और भाषा एक दूसरे को जोड़ती
0: बिल्कुल
1: है
0: जोड़ती
1: ना।
0: है। और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
1: क्या बात है। तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए, अपनी
0: जी
1: मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
0: बिल्कुल
1: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज क्रिटिसाइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना, लेकिन शौक रखना चाहिए,
0: अपने मन से सीखिए। आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
1: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधर

0: है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम
1: जी
0: रखते हैं, किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं
1: बिल्कुल
0: और आपकी पर्सनालिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती है, तो हम सच में एकदम से कहने लगते, कैसे इतनी भाषाएं
0: हाँ,
1: बोल
0: हम
1: लेते
0: चौंक
1: हैं
0: जाते हैं
1: जी।
0: और हमारी दृष्टि में उसके प्रति एक सम्मान और बढ़
1: बिल्कुल
0: जाता है,
1: बिल्कुल बढ़ जाता
0: देखने
1: है
0: का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब
1: जी,
0: हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो
1: बिल्कुल
0: भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और
1: जी
0: इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है
1: जी
0: ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ,
1: जी
0: कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया, वो एक अलग बात है,
1: जी
0: लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती है।
1: बिल्कुल
0: तो एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

घटलाई क्या छुपाके, घटलाई क्या छुपाके, बिन कारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की, तो उस पे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है, अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी, तब मेरा छोटा भाई, जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है, मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया, और उसके बाद उसके पूरे चेहरे, हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो
0: बिल्कुल,
1: अपना कुछ ना
0: वो तो
1: कुछ,
0: उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो
0: फिर
1: भी तो
0: उन्होंने बचाव।
1: सुरक्षा महसूस करती
0: जी
1: है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है,
0: जी
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना। आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया,
0: बिल्कुल।
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं
0: पानी पे
1: मारना
0: भी
1: है,
0: अगर आप पत्थर मारेंगे तो वो उछल के
1: उसका
0: आप पर
1: उछल
0: आएगा।
1: कर आप पर आएगा। आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे
0: बिल्कुल,
1: तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी
0: जी।
1: शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम
0: और ये
1: सामने
0: बहुत
1: आते हैं।
0: खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो
1: हाँ
0: बहुत ज्यादा, अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है,
0: है।
1: मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं।
0: हाँ
1: अगर आपने इनको छेड़
0: बिल्कुल
1: दिया
0: बिल्कुल, मच्छी
1: ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, जो
0: बहुत।
1: पीले रंग का होता है ना,
0: हाँ,
1: वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर दे

0: होता है,
1: बिल्कुल
0: है ना। तो चलिए भाषा पर हम बात कर रहे थे, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है।
1: जी, और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी मेरे से एक कदम आगे हैं, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा भाई ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
0: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना,
1: बहुत बड़ी भाषा है,
0: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है।
1: जी, और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह ना श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
0: बिल्कुल, देखिए यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं और ये न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृतियों, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी
0: बिल्कुल। और
1: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी,
1: भाषा भाषा
0: है, विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
1: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
0: चलिए जरूरी है, भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा
1: का भी बुरी नहीं,
0: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए।
1: जी,
0: एक गाना सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह
1: जी
0: से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं।
1: जी
0: और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था
1: सद्भावना।
0: सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार। मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने ये भी जानना चाहा था कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो
0: क्या
1: अर्थ है,
0: वो क्या है। हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेम पूर्ण व्यवहार। और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है। और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल। एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका।
1: बिल्कुल,
0: ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता या क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल।
0: प्रतीक्षा।
1: और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीज़ों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी। तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा छोटा चम्मच, और पानी और आधा कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या घी तलने के लिए, और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़ पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको, गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है, और इसे ठंडा होने दीजिए, और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाएं। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ, इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में या घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
0: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे
1: बिल्कुल। और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पे

0: पेज पे मिली जाएगी,
1: मिल जाएगी, तो बनाने की मैं भी
0: समय
1: कोशिश
0: की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
3: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
2: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
3: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि

0: न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहाँ ले गई?
1: नहीं, जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
0: जी,
1: अल्मोड़ा हुआ,
0: अरे गजब,
1: पहाड़ों पर।
0: पहाड़ों
1: और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं,
0: पर
1: मतलब
0: जी
1: मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त, तब तक
0: अच्छा
1: शुरू नहीं हुआ था। तो जो
0: जी
1: शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह कर इतना आदी था, और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से
0: जी
1: था,
0: जी जी
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब,
0: हाँ
1: और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब। तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था
0: जी
1: वो एक अलग अनुभव था। तो
0: जी
1: एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है, और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहाँ चलते चले जाओ, चलते चले जाओ,
0: हाँ
1: उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो
0: हाँ
1: तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, मतलब
0: बहुत
1: घूमने
0: मुश्किल
1: जाओ तो
0: है
1: अलग बात है,
0: जी।
1: लेकिन आपको रहना हो, और जो कभी रहा ना हो, कभी
0: हाँ
1: रहा ना हो,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा, और मैं 1-1.5 साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, और उसके बाद फिर बॉम्बे आया
0: अच्छा,
1: 86 में।
0: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत
1: हाँ
0: जी का इलाका था,
1: हाँ हाँ
0: तो वो तमाम चीजें
1: और
0: वो
1: वो भी
0: सब।
1: सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अज्ञेय जी वहां पे
0: हाँ
1: रहे, और रविशंकर जी का वहां पे वो था, है ना,
0: बिल्कुल,
1: तो
0: यस,
1: ये सब भी,
0: उदय शंकर जी का
1: उदय
0: था
1: शंकर, सॉरी, उदय
0: जी
1: शंकर जी का, तो वो सब भी देखा, घूमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब, कि
0: जी
1: ये सब। लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
0: रहते
1: रहेंगे। उस वक्त
0: कैसे
1: वाकई हैरान होता था मैं, कि
0: जी
1: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है, पहाड़ों में कैसे।
0: बिल्कुल,
1: तो ये था।
0: मुंबई 80 के दशक की मुंबई बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी,
0: जी
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त ये 86 में जब हम आए आए थे, तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है,
0: बिल्कुल
1: ये
0: बिल्कुल
1: भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक
0: जी
1: अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहाँ पे थे, तो 11 11 महीने का जो किराया होता है उस
0: हाँ
1: पर, वो उस पैटर्न पे रहे, और अलॉट होने का तो सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम,
0: बिल्कुल,
1: है
0: और तब तो लंबी लाइनें
1: ना। हाँ,
0: हुआ
1: वो
0: करती
1: लंबी
0: थी
1: लाइनें हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहाँ रहे, और फिर वहाँ से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटोपिल से किंग सर्कल आना वहाँ से पैदल,
0: जी।
1: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस सब शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई ट्रेन
0: हाँ,
1: में।
0: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से
1: हाँ,
0: ढाल लेता
1: तो फिर
0: है
1: वो लोग अपने आप आपको उतार देते
0: जी।
1: हैं। तो ट्रेन में ये हुआ कि उस दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ,
0: जी,
1: उतार देंगे लोग,
0: लोग उतार
1: तो ये
0: देंगे
1: उतार ठीक
0: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहां लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
1: यहाँ जो जिंदगी बदली, वो मेरी उस वक्त गजल गायकी पीक
0: चरम
1: पर
0: पर
1: थी,
0: थी
1: चरम
0: जी
1: पर थी। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी, मतलब
0: जी
1: जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे, मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त ये
0: बजाया करते थे
1: बजाया
0: उसको
1: करते थे लोग, तो इतनी पॉपुलर, नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो, और
0: बिल्कुल।
1: वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई,
0: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में

0: काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूं कि भूपिंदर सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
1: बहुत प्यार है,
0: बल्कि
1: बहुत
0: हमने
1: प्यार।
0: उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी, आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
1: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की,
0: जी
1: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर जो
0: जी
1: खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
0: क्या
1: हाँ
0: बात
1: ना,
0: है,
1: तो
0: क्या
1: वो किसी गजल सिंगर ने और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर, तो ये हुआ। नहीं, उसके बाद फिर जगजीत जी से बात हुई तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ। वो
0: पेडर रोड
1: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था, तो
0: जी
1: मैं गया और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है।
0: जी
1: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, वो
0: जी
1: रोज रियाज करना उनका काम था। जब मुंबई में होते थे
0: जी
1: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये
0: जी
1: तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वरना अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे,
0: जी
1: हाँ वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहली ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
0: वाह
1: वरना
0: वाह
1: अक्सर होता है
0: वाह
1: कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता
0: जी
1: हूँ,
0: जी
1: है ना।
0: जी जी
1: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
0: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे ये
1: नहीं, ये जो जिंदगी की
0: जो
1: किताब है,
0: जिंदगी की किताब है, वाह
1: तो
0: वाह वाह
1: ये
0: वाह।
1: वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
0: और भूपी जी ने क्या गाया था?
1: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत हैं, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
0: अच्छा
1: हाँ,
0: हाँ
1: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
0: हाँ हाँ
1: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ता हूँ न सुनाता हूँ, और
0: जी
1: वो गजल जो मैंने कभी आज तक छू ही नहीं,
0: अच्छा,
1: वो गजल शराब पड़ती। तो वो
0: गजब।
1: गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए।
0: जी, ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
1: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई,
0: जी
1: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
0: वो
1: तो
0: ही
1: उसको
0: अब
1: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
0: जरूर जरूर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन। 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल। वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीत

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: पापा लाइए 3000।
4: क्यों भाई?
3: मेरी पॉकेट मनी।
4: अरे अभी तो सिर्फ 2000 ही कैश है।
3: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
4: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1000 ले जाओ,
3: अपना मोबाइल लाओ।
4: ले ले।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात
1: बिल्कुल
0: थी
1: सही,
0: और
1: बिल्कुल
0: ये
1: सही।
0: बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा तो वही बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी
1: और
0: जी
1: ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे,
0: खूब
1: और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है।
0: बिल्कुल
1: और उसमें जो
0: बिल्कुल
1: कमेंट्स हैं लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई है, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी
1: जी
0: रिंगटोन में भी ये गजल
1: जी जी
0: बजती
1: जी
0: है।
1: जी
0: जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
1: पंकज जी उसके बाद

0: जी
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं पंकज जी पहले ये गजल थी वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होना सर, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की सब
0: नबील
1: जगह।
0: था,
1: हाँ
0: नबील था,
1: नबील नबील,
0: जी,
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो
0: जी
1: एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही।
0: आरोही
1: हाँ तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में।
0: जी
1: अच्छा उन दिनों पता नहीं क्यों या एक नहीं हुआ तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था नीचे,
0: अरे बाप रे,
1: नहीं था, तो उन्होंने गा दी गजल। तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें यह गजल कहीं मिली?
1: नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है,
0: अच्छा है, ओके,
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही
1: इन दो
0: में
1: घंटे आता
0: गाया।
1: रहा। तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ, तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी। और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने
1: हाँ
0: ये बात
1: ये मेरे
0: कही।
1: उस, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में वो, लेकिन हम
0: जी
1: बहुत अरसे से नहीं मिले थे। तो
0: जी जी
1: ये पाकिस्तानी शायर क्या खा के गजल लिखते हैं, है ना।
0: ओहो
1: तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और
0: जी
1: ये यही की गजल है। तो बोल ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था,
0: हाँ,
1: सीरियल है
0: बिल्कुल
1: ना,
0: बिल्कुल,
1: और
0: बड़ा नाम है अजय
1: हाँ।
0: कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था। अच्छा
0: जी
1: दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत, उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े
0: जी
1: शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ तो वो पंकज जी वहाँ पे, उन्होंने कंसर्ट किया वहाँ, गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो गया,
0: हाँ बिल्कुल,
1: कुछ तलफ़ुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया है, कुछ मैंने कुछ कमजारा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया हाँ, या सुर का इधर उधर, नहीं फिर सुनाओ फिर एक बार फिर। उन्होंने 3 बार ये सुना और हाँ वाह, तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी ये, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था,
0: जी
1: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
0: वाह वाह वाह
1: तो ये
0: वाह,
1: मजरू
0: मजरू जैसे
1: सुल्तानपुरी साहब का
0: बड़े
1: आशीर्वाद
0: शायर
1: था,
0: की बात
1: है
0: है
1: ना।
0: ये,
1: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं, तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था।
0: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।
1: जी।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर तो शायरी का ही रहा,
0: जी
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे
0: बिल्कुल
1: पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है,
0: जी
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना
0: बिल्कुल, बहुत ही मशहूर।
1: मशहूर,

0: जी
1: आज तो वो दौर नहीं है,
0: जी
1: लेकिन एक जमाना था, मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी,
0: जी
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: कैफी आजमी, मुमताज राशिद, और ये सब बड़े बड़े नाम है ना,
0: जी
1: बशीर
0: जी
1: बद्र, निदा साहब, निदा साहब उसके संचालन कर
0: सदर,
1: रहे थे, अली
0: जी
1: सरदार जाफरी उसके वो थे, सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे
1: अजीत एक्टर,
0: जी,
1: और भी कई थे, फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू
0: अलग
1: सेंटर
0: ही
1: के
0: होता
1: अलग
0: था
1: ही हुआ करता था,
0: जी।
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा, तो बड़ा मुशायरा, तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूँ कह लीजिए
0: अरे
1: तो
0: बाप रे।
1: शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पे बुला, मेरा पहला मुशायरा, और ये ऑडियंस, ये लोग है
0: जी
1: ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी,
0: हाँ
1: तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता, तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया,
0: अरे अब
1: मतलब
0: तो
1: ये
0: शुरुआत कर रहे थे जबकि
1: हाँ
0: जी।
1: मुशायरा तो हो गया,
0: अरे
1: मतलब
0: बाप रे, बहुत बड़ी बात है
1: ये बड़ी बात थी। तो
0: जी
1: ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना,
0: जी
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया अपने
0: गजब
1: घर पर, फिर
0: जी।
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुनना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन जो बता रहा हूँ जिसके बारे में,
0: जी
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी,
0: हाँ
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका
0: हाँ
1: आखिरी एल्बम था ये,
0: ओहो
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे
0: चले
1: दुनिया
0: गए
1: में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: वो एल्बम रिलीज नहीं हुआ। चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे, नहीं करेंगे।
0: जी
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। लेकिन इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब, पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई, और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका वो करें, हाँ, तो मैं
0: बिल्कुल
1: उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते हैं, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा।
0: जी।
1: तो किताब लेके, रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके भी चला गया। तो मैं मिला वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहाँ उसको कर देंगे उसमें सब, ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गज़ल गाई, दूसरी गज़ल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गज़ल गाई, और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गज़ल जो मैंने अभी गाई, ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है, और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है, वो लेके आए किताब। तो फिर मैं ऊपर गया और वो नमस्ते और तक क्लैपिंग वगैरह सब कुछ हुआ, फिर जगजीत जी ने वो उसका
0: रिबन
1: वो कर दिया,
0: खोला
1: रिबन खोला, ऑडियंस के सामने ये सब हो गया, और तालियां वालियाँ सब हो गई, और मैं स्टेज से उतरने लगा।
0: जी,
1: तो बोले नहीं राजेश रुकिए, तो मैं आया, तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है
0: हाँ
1: पूरा,
0: बाकायदा, और पूरा
1: हाँ
0: हॉल
1: पूरा
0: भरा
1: हॉल
0: हुआ है
1: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए,
0: अरे
1: स्टैंडिंग
0: बाप रे।
1: माइक दीजिए, हाँ, तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि, तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
0: अरे बाप रे
1: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब उनको
0: जी,
1: पसंद थी गजल, तो सारे, तो वो गजल पढ़ी, जाने कितनी उड़ान बाकी, तो बात वहीं खत्म हुई। मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, हो ये रहा है कि मैं, मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
0: अरे गजब
1: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ,
0: जी जी
1: आज
0: जी
1: तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ
0: गजब गजब
1: ऐसा विमोचन, और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूं और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं वो उसे गा रहे हैं,
0: अद्भुत
1: ये
0: अद्भुत
1: अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं ले गए आप, मुझे
0: अरे
1: क्यों नहीं ले
0: बाप
1: गए,
0: रे यार, ये
1: और
0: तो
1: तो
0: बड़ा
1: आपको
0: मिस हुआ।
1: मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे बता दी। तो

0: तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: हाँ।

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस,
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: वाह वाह,
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस

0: रिजल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूँ।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके

0: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार।
1: जी
0: विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में 2 बार गुजारा है। और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए, उसमें सरगम के सितारे, उजाले,
1: उनकी
0: उनकी
1: यादों पे।
0: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी
1: सखी
0: सहेली आपके
1: सहेली।
0: दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
1: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से।
0: जी
1: मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए, या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं। मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था। और उस टीम का जवाब नहीं जिसने
0: बिल्कुल
1: मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा। तो सबसे पहले यूनुस,
0: अरे राकेश जोशी की,
1: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे, लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे एक तरह
0: सब
1: से।
0: चीजों को
1: हाँ,
0: संभालते
1: सब कुछ सब संभालते थे।
0: थे
1: तो एक अच्छी टीम थी
0: जी,
1: जो हर तरह से, जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और
0: बिल्कुल
1: वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ, मतलब
0: जी
1: हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया।
0: बिल्कुल। और हर
1: ऐसा कम
0: रोज आप
1: होता
0: एक
1: है,
0: नई चुनौती
1: ऐसा
0: सामने
1: कम
0: रखते
1: होता
0: थे
1: है।
0: जी।
1: तो हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है उसके
0: नौशाद
1: साथ
0: साहब आ
1: कहीं।
0: रहे हैं,
1: हाँ,
0: खयाम साहब आ रहे हैं
1: खयाम साहब आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए,
0: जी,
1: आनंद जी आए, है
0: बिल्कुल
1: ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे, तो
0: बिल्कुल,
1: सारे। और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग, है
0: रवि जी
1: ना।
0: आए,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: खयाम साहब,
0: खयाम साहब आए, और
1: हाँ
0: बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा
1: हाँ
0: है।
1: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
0: मुझे याद है कि
1: हमारे
0: खयाम
1: मेहमान।
0: साहब, नौशाद साहब आए हैं,
1: हाँ
0: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
1: हाँ
0: और वहीं 1 घंटे बात हो रही
1: हाँ उनको
0: है
1: वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो, उनको बोलने का बहुत वो था, वो
0: जी
1: अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
0: बिल्कुल
1: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे और देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के भी हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि 1 घंटे में बांध लिया, 2 घंटे में बांध लिया। उनको कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम
0: ज्यादा
1: उनके
0: कर
1: ले
0: सकते
1: सकते
0: थे
1: हैं उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये
0: जी,
1: लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया
0: बिल्कुल
1: में? तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं
0: किसी
1: है,
0: के पास नहीं
1: किसी के पास नहीं है। वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है,
0: जी।
1: लेकिन इस तरह की

0: और रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, या
1: बिल्कुल
0: गानों पे बातें हो रही हैं, या गाने कैसे बने उस पे बातें हो रही
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा,
1: एक से बढ़ के एक
0: एक से
1: चीजें
0: बढ़कर
1: हैं,
0: एक
1: एक से
0: प्रोग्राम जो
1: बढ़ के
0: है
1: एक हैं।
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक, तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: और
1: ट्रिब्यूट
0: पूरा
1: हो रहा है
0: प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये
1: जी
0: सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ, और कहीं नहीं
1: जी
0: हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हों, चाहे ट्रिब्यूट्स हों, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था, और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना
0: नहीं, क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा, और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है,
1: जी
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था, कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए,
1: जी
0: तो ये भी हुआ है। और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में, तो
1: बिल्कुल
0: उसके बाद तो कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था,
1: जी
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल। विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था। दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को। तो एक जुनून, उससे मैं वाकिफ हूं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: एक जरूरी बात रह गई है, और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: हाँ, रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बड़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं
0: जी
1: मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकॉन्ग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था,
0: जी
1: तो कोई संभावना नहीं थी उसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़े पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था, और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था,
0: जी
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है,
0: जी
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है
0: ओके
1: घर में, तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन लॉ, फादर इन लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है, मदर इन लॉ जो है, वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।
1: तो आर्य समाज में तय हुआ शादी, हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था, तो
0: जी
1: वो सब
0: जी
1: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए,
0: अरे वाह,
1: आर्य समाज की शादी में,
0: क्या बात है।
1: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने
0: अरे
1: घर चला आया,
0: जी,
1: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है,
0: हाँ,
1: और तो अब तो
0: कुछ हो नहीं
1: उनकी नहीं
0: सकता
1: होंगी
0: था।
1: नहीं कि सबकी, तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो
0: हाँ
1: नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं, तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं, तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए,
0: हाँ
1: फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ, क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे,
0: हाँ
1: तो मुझे यहाँ से ले

0: अरे बाप रे।
1: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूं मैं अब,
0: हाँ हाँ हाँ
1: तो
0: हाँ
1: मुझे ले जाओ यहां से। तो मैं अपने दो लेक्चरर्स के साथ घर गया हूं उनके,
0: गजब।
1: और हाँ, और हमारे इन फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो
0: हाँ
1: हाँ, ये बैठी चाय वाय पी सब कुछ हुआ, तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना,
0: हाँ
1: हम ढंग से करते हैं, इसमें करेंगे
0: हाँ
1: उसको पूछे। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
0: ये नहीं हो रहा
1: ये
0: है।
1: नहीं होने देंगे,
0: हाँ
1: मैं भी चलूंगी,
0: गजब,
1: मैं भी चलूंगी। तो
0: बाप रे।
1: फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया
0: जी जी
1: जब
0: जी
1: उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है,
0: और
1: तो उन्होंने
0: ये
1: कहा हाँ। तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई, और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है,
0: हाँ
1: सारा साहस इनका है,
0: क्या बात है
1: ये उस जमाने में।
0: जी, शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, दो एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी।
1: जरूर।
0: चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
1: मैं दो तीन शेर सुनाता हूं।
0: जी जरूर इरशाद।
1: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ। किसी दिन जिंदगानी में
0: किसी दिन
1: करिश्मा
0: जिंदगा,
1: क्यों नहीं होता,
0: वाह
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता,
0: वाह वाह वाह वाह वाह
1: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह
1: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, मेरी एक जिंदगी के कितने
0: कितने हिस्सेदार हैं।
1: हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
0: वाह वाह वाह
1: मेरी एक
0: वाह
1: जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं लेकिन, किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और दो छोटी छोटी बहर के शेर।
0: इरशाद।
1: एक तो ये शेर के, एक आंसू
0: एक आंसू
1: कोरे कागज पर गिरा,
0: वाह,
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा,
1: कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या
1: एक
0: बात है,
1: आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
0: क्या बात है।
1: और ये शेर आखिर में, गम छुपाना
0: गम छुपाना,
1: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह
1: गम
0: वाह वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या
1: छुपाना
0: बात है
1: कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
0: क्या बात है क्या बात
1: शुक्रिया।
0: है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाएं जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
1: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं और अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी,
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी,
0: जी
1: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था,
0: जी जी
1: मतलब किसी
0: डिफिकल्ट
1: लाइन
0: होता
1: पर।
0: है ये,
1: हाँ, लेकिन ये गजल मुझे वहां दो बार पढ़नी पड़ी,
0: क्या बात है,
1: इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई,
0: वाह
1: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूं।
0: इरशाद इरशाद।

0: अब क्या बताए टूटे हैं कितने, कहाँ से हम खुद को समेटते हैं, यहां से
1: क्या बात
0: वहां
1: है,
0: से
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम।

0: हैं टू, और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूं,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक
1: ये
0: होता
1: होता है
0: शराब जिसे
1: शराब
0: मृग मरीचि का
1: जी।
0: मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं, कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है दिखता है, होता नहीं
1: होता नहीं।
0: है ना।

0: मरुस्थल में,
1: आग का धोखा है।
0: हाँ पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं टूटे हैं कितने कहाँ से हम, अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यार,
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: से हम
1: क्या बात है, क्या
0: थैंक
1: बात
0: यू
1: है।
0: थैंक यू।
1: तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशिका। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आज के

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के ठीक 5 बजने को हैं। कुछ ही देर में हमारे युवा साथी सुनेंगे उनका दैनिक कार्यक्रम यू

गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने मन पसंद कार्यक्रम युवानी में। आज मैं हूं आपके साथ वंदना और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रेरणा। आज यानी 20 मई के सफ़र में हमारे पास आपके लिए बहुत कुछ खास है। आज हम बात करेंगे पैकेजिंग इंडस्ट्री के नए स्टार्टअप्स और यूथ एम्पावरमेंट में फ्रीलांसिंग के बढ़ते दौर की। साथ ही आपको सैर कराएंगे इतिहास के उस बेजोड़ अजूबे की जिसे हम एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। आज वर्ल्ड बी डे भी है और उसी के साथ साथ हम सुमित्रा नंदन पंत, एनटी रामाराव जूनियर और जेम्स स्टीवर्ट जैसी महान हस्तियों को भी याद करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह शेयर मार्केट का हाल, स्पोर्ट्स अपडेट और आज का इतिहास भी शामिल रहेगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं आज का सफर।

0: वंदना, कभी सोचा है अगर एक दिन अचानक धरती से ये छोटी सी भिनभिनाहट गायब हो जाए तो क्या होगा?
1: शायद फूलों की रंगत फीकी पड़ जाएगी, शायद खेतों की मुस्कान सूख जाएगी और शायद प्रकृति थोड़ी खामोश हो जाएगी।
0: क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा कीड़ा नहीं, ये धरती का सबसे मेहनती साइलेंट वर्कर है। इतनी छोटी फिर भी पूरी दुनिया के भोजन और पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षक।
1: हर साल आज ही के दिन यानी 20 मई को दुनिया मनाती है वर्ल्ड बी डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इंसान अकेले प्रकृति को जीवित नहीं रख सकता।
0: दोस्तों, इस दिन को यूनाइटेड नेशंस ने ऑफिशियली मान्यता दी और 20 मई इसलिए चुना गया क्योंकि आज ही के दिन जन्म हुआ था एंटोन जेनशा का, जिन्हें मॉडर्न बी कीपिंग का पायोनियर माना जाता है।
1: दोस्तों, हमारी प्लेट में जो रंग बिरंगे फल और सब्जियां आती है ना, उनमें से अधिकांश कहीं ना कहीं मधुमक्खियों की मेहनत का परिणाम है।
0: और अगर एक चौंका देने वाला फैक्ट अगर आपको बताया जाए तो वो ये है कि दुनिया की लगभग 75% फूड क्रॉप्स पॉलिनेशन पर निर्भर करती है और पॉलिनेशन का सबसे बड़ा जिम्मा संभालती है हमारी मधुमक्खियां।
1: यानी सेब की मिठास, आम की खुशबू, स्ट्रॉबेरी का स्वाद, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन नन्हे पंखों की मेहनत छुपी है।
0: लेकिन अफसोस, आज क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स और पॉल्यूशन की वजह से बीज की जो संख्या है वो लगातार कम होती जा रही है।
1: और साइंटिस्ट इसे सिर्फ इंसेक्ट्स को कम होना नहीं मानते, वे मानते हैं कि ये नेचर का वार्निंग अलार्म है।
0: क्योंकि जब बीज खतरे में होती है तो समझ लीजिए इकोसिस्टम का बैलेंस भी खतरे में है।
1: अब चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको कहने पर मजबूर कर देंगे कि वाह, इतनी छोटी और इतनी अद्भुत।
0: दोस्तों, एक वर्कर बी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ लगभग एक चम्मच के 12वें हिस्से जितना शहद बना पाती है।
1: बीज डांस करके एक दूसरे को रास्ता बताती है, इसे कहा जाता है वैगल डांस।
0: एक बी कॉलोनी में लगभग 50,000 से ज्यादा मधुमक्खियां रह सकती है।
1: और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर मधुमक्खियां धरती से गायब हो जाएं, तो सिर्फ हनी नहीं, हमारी बायोडाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी तक प्रभावित हो सकती है।
0: तो दोस्तों, आज जब भी किसी फूल पर मंडराती हुई मधुमक्खी को देखें तो उसे सिर्फ एक इंसेक्ट मत समझिएगा,
1: क्योंकि वो अपने छोटे छोटे पंखों से धरती की हरियाली, खेतों की उम्मीद और आने वाले कल की जिंदगी को उड़ान दे रही है।
0: ये नन्ही सी उड़ाने ही धरती को महकाती है। मधुमक्खियां सिर्फ शहद नहीं, जीवन की मिठास बचाती।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जो हर प्रोडक्ट के साथ साइलेंटली जुड़ी होती है, लेकिन आज स्टार्टअप ने इसे सुपर इनोवेटिव बना दिया है। नाम है इसका पैकेजिंग इंडस्ट्री।
1: बिल्कुल, पहले पैकेजिंग का मतलब सिर्फ डब्बा या प्लास्टिक रैप होता था, लेकिन अब स्मार्ट, इको फ्रेंडली और क्रिएटिव पैकेजिंग का जमाना आ गया है।
0: और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का पैकेजिंग मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स और कॉस्मेटिक ब्रांड्स के बढ़ते ट्रेंड ने पैकेजिंग स्टार्टअप को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है।
1: आजकल कस्टमर्स

0: बूज और कॉर्न स्टार्च से।
1: मतलब खाना ऑर्डर करो और पैकेजिंग भी नेचर फ्रेंडली, ये हुई ना सस्टेनेबल थिंकिंग।
0: अब पैकेजिंग सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं है, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो भी बन चुकी है।
1: एग्जैक्टली, QR कोड्स, टेम्परेचर सेंसिटिव लेबल्स, एंटी काउंटरफिट सील्स सब यूज हो रहा है।
0: और स्टार्टअप्स AI और IoT का यूज करके स्मार्ट पैकेजिंग डेवलप कर रहे हैं जो प्रोडक्ट फ्रेशनेस ट्रैक कर सकती है। स्पेशली मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री में इसका यूज बढ़ रहा है।
1: ऑनलाइन शॉपिंग ने पैकेजिंग इंडस्ट्री को लिटरली बूस्ट दे दिया है, हर दिन लाखों पार्सल्स डिलीवर होते हैं।
0: और इसी वजह से कस्टमाइज्ड बॉक्सेस, टेम्पर प्रूफ पैकेट्स और प्रोटेक्टिव पैकेजिंग की डिमांड जो है वो बहुत ही ज्यादा आसमान छूने लगी है।
1: और अब तो स्मॉल बिजनेसेस भी अपनी ब्रांडिंग वाली पैकेजिंग चाहते हैं ताकि कस्टमर को वाओ एक्सपीरियंस मिले।
0: और सबसे इंस्पायरिंग बात ये है कि बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स इस फील्ड में आ रहे हैं।
1: कुछ स्टार्टअप्स रीयूजेबल डिलीवरी बॉक्सेस बना रहे हैं तो कुछ एडिबल पैकेजिंग पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इमेजिन करो, पैकेजिंग को फेंकना नहीं है, खाना है।
0: और दोस्तों, इनोवेशन का लेवल तो देखिए कि पैकेजिंग इंडस्ट्री का एक और एक्साइटिंग एंगल है ये, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़। आज इंडियन पैकेजिंग स्टार्टअप्स इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना रहे हैं।
1: बिल्कुल, पहले इंडिया मेनली लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था, लेकिन अब इनोवेटिव और सस्टेनेबल पैकेजिंग सॉल्यूशंस की वजह से इंडियन स्टार्टअप्स को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिल रही है।
0: स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे मार्केट्स में इको फ्रेंडली पैकेजिंग की डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही है। वहां गवर्नमेंट्स सिंगल यूज प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो लेकर आ रही है।
1: बिल्कुल, और इसी अपॉर्चुनिटी को इंडियन स्टार्टअप्स स्मार्टली यूज कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल बॉक्सेस, रिसाइकल पेपर मीलर्स, कॉम्पोस्टेबल फूड कंटेनर्स और प्लांट बेस्ड पैकेजिंग मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं।
0: और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इंडिया के पास रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग दोनों का स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, इसीलिए इंडियन स्टार्टअप्स कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट में हाई क्वालिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो है वो कर पा रही है।
1: सही कहा, और सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं, पैकेजिंग डिजाइन सर्विसेज भी ग्लोबली डिमांड में है। आज ब्रांडिंग और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि कंपनीज अट्रैक्टिव पैकेजिंग पर मिलियंस इन्वेस्ट कर रही है।
0: और ई कॉमर्स जायंट्स और लग्जरी ब्रांड्स भी कस्टमाइज पैकेजिंग सॉल्यूशंस चाहते हैं ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट ओपन करते ही प्रीमियम फील आए।
1: इसीलिए स्टार्टअप्स अब लाइट वेट पैकेजिंग और मॉइस्चर रेजिस्टेंट मटेरियल्स, साथ ही स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं जिससे शॉपिंग कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्ट सेफ्टी भी मेंटेन रहे।
0: मतलब एक सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स के पीछे भी टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और इंटरनेशनल बिजनेस स्ट्रेटजी का बड़ा रोल होता है।
1: Exactly, प्रेरणा। और ये इंडस्ट्री यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी बन चुकी है जहां इनोवेशन डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, पैकेजिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ रैपिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये सस्टेनेबिलिटी, ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी का पावरफुल कॉम्बिनेशन बन चुकी है।
0: और स्टार्टअप इस इंडस्ट्री को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। हो सकता है कि कल का नेक्स्ट यूनिकॉर्न किसी कार्डबोर्ड बॉक्स आइडिया से ही निकले।

0: दोस्तों, पैकेजिंग इंडस्ट्री की ये मॉडर्न और इनोवेटिव दुनिया हमें दिखाती है कि इंसान की क्रिएटिविटी किस लेवल तक जा सकती है।
1: और जब क्रिएटिविटी और इंजीनियरिंग की बात हो तो हमें अपनी हिस्ट्री के कुछ ऐसे मास्टरपीसेस भी याद आते हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया था।
0: बिल्कुल, आज स्टार्टअप स्मार्ट पैकेजिंग बना रहे हैं, लेकिन सदियों पहले भारत के कलाकारों ने पत्थरों में ऐसी इंजीनियरिंग दिखाई थी जिसे देखकर लोग आज भी अचंभित हो जाते हैं।
1: तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्टअप वर्ल्ड से निकलकर चलते हैं महाराष्ट्र के एलोरा की तरफ और बात करते हैं दुनिया के सबसे इनक्रेडिबल रॉक कट स्ट्रक्चर्स में से एक, कैलाश टेम्पल की। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है कैलाश टेम्पल, जिसे देखकर इंसान एक ही बात सोच सकता है, आखिर ये पॉसिबल हुआ कैसे होगा।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये कोई नॉर्मल मंदिर नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल माना जाता है, यानी पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है।
1: और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इसे ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन की तरह नहीं बनाया गया, यानी नीचे से ऊपर इसे नहीं बनाया गया, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर इसका एक्सकेवेशन किया गया था, इसे कार्व किया गया था। मतलब क्राफ्ट्समैन ने पहले पहाड़ के ऊपर पोर्शन को कट किया और धीरे धीरे नीचे आते हुए पूरा स्ट्रक्चर निकाला।
0: दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये जो मंदिर है वो 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट का रूलर कृष्ण प्रथम के रीजन में कंस्ट्रक्ट हुआ था। इसका नाम भगवान शिव के डिवाइन होम माउंट कैलाश पर रखा गया है।
1: और अब जरा इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो टेम्पल द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर का एक मास्टरपीस माना जाता है।
0: दोस्तों, इस टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है वो लगभग 276 फीट लंबा और लगभग 150 फीट चौड़ा माना जाता है, और जो सेंट्रल श्रीन है उसकी हाइट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जितनी लगती है।
1: एंट्रेंस पर आपको एक ग्रैंड गेटवे दिखता है, उसके बाद कोर्टयार्ड और फिर मैसिव स्टोन एलिफेंट्स और पिलर्स नजर आते हैं जो ऐसा फील देते हैं जैसे पूरा टेम्पल उनके कंधों पर टिका हो।
0: दोस्तों, टेम्पल के अंदर नंदी मंडप भी बना हुआ है, यानी भगवान शिव की सवारी नंदी को डेडिकेटेड स्ट्रक्चर, और ये भी एक ही रॉक मास का पार्ट है।
1: और सबसे मेस्मराइजिंग चीज ये है इसकी कार्विंग्स। वॉल्स पर रामायण और महाभारत के सीन्स ब्यूटीफुली डिपिक किए गए हैं। रावण शेकिंग माउंट कैलाश वाली स्क्रिप्चर स्पेशली बहुत फेमस है।
0: और डिटेलिंग देखिए दोस्तों, टाइनी ऑर्नामेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, डांसिंग फिगर्स, देवी देवताओं की मूर्तियां और मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स, सब कुछ इतनी बारीकी से बनाया गया है कि आज भी कोई इसे देखता है तो वो बिल्कुल अचंभित हो जाता है।
1: और एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इस टेम्पल को बनाने के लिए करीबन 200,000 टन पत्थर रिमूव किया गया होगा, और कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी मानते हैं कि अगर कंटिन्यूसली काम भी किया हो तब भी इसे कंप्लीट करने में दशक लग गए होंगे।
0: और दोस्तों, उस टाइम ना तो मॉडर्न ड्रिलिंग मशीन्स थी, ना क्रेन्स, ना लेजर मेजरमेंट्स। दोस्तों, वहां से थे तो सिर्फ हैमर्स, कीसल्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिकल प्लानिंग।
1: मंदिर की सिमेट्री और अलाइनमेंट इतनी एक्यूरेट है कि मॉडर्न आर्किटेक्ट भी इसकी

0: इंजीनियरिंग को स्टडी करते हैं। रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट है और साथ ही स्ट्रक्चरल बैलेंस भी रिमार्केबल माना जाता है।
1: दोस्तों, कैलाश टेम्पल एलोरा केव्स का केव नंबर 16 है और एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन केव्स एक साथ मिलते हैं, जो इंडिया की कल्चरल हार्मोनी को भी रिफ्लेक्ट करती है।
0: और इसी हिस्टोरिकल और आर्टिस्टिक इम्पोर्टेंस की वजह से एलोरा केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया है और हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट और रिसर्चर्स यहाँ आते हैं।
1: सच में कैलाश टेम्पल सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, ये ह्यूमन इमेजिनेशन, डेडिकेशन और इंजीनियरिंग की ब्रिलियंस एग्जाम्पल है।
0: बिल्कुल, और जब भी हम मॉडर्न इनोवेशन की बात करें, हमें याद रखना चाहिए कि सेंचुरीज पहले भी भारत में ऐसी क्रिएशंस हुई थी जो आज तक मिस्ट्री और इंस्पिरेशन बनी हुई है।

0: दोस्तों, कैलाश टेम्पल हमें यह सिखाता है कि जब विजन, स्किल और डेडिकेशन एक साथ आ जाए तो पत्थरों में भी मास्टरपीसेस क्रिएट किए जा सकते हैं।
1: और आज के यूथ के पास भी कुछ ऐसी ही पावर है, बस टूल्स और प्लेटफॉर्म्स मॉडर्न हो गए हैं। पहले लोग चिजल और हैमर से हिस्ट्री क्रिएट करते थे और आज लैपटॉप्स और इंटरनेट से नए करियर पाथ्स बिल्ड हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, आज का यंग जनरेशन ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब्स के अलावा अपनी स्किल्स के दम पर इंडिपेंडेंट करियर बना रहा है।
1: तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूथ एम्पावरमेंट के एक रैपिडली ग्रोइंग ट्रेंड की, फ्रीलांसिंग। तो प्रेरणा, आज के डिजिटल एरा में जॉब का मतलब सिर्फ ऑफिस जाना और फिक्स्ड डेस्क पर काम करना नहीं रहा। अब एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और स्किल के दम पर दुनिया के किसी भी कोने से काम किया जा सकता है, और इसी रिवॉल्यूशन का नाम है फ्रीलांसिंग।
0: बिल्कुल, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली क्लाइंट्स के लिए काम करना, यानी आप किसी एक कंपनी तक लिमिटेड नहीं होते, बल्कि अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर सकते हैं।
1: सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ IT या कोडिंग तक लिमिटेड नहीं है।

0: आज ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोग फ्रीलांस करियर बिल्ड कर सकते हैं।
1: अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, फोटोग्राफी, म्यूजिक प्रोडक्शन या कंटेंट राइटर, तो फ्रीलांसिंग का की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ही ह्यूज है।
0: सोशल मीडिया ग्रोथ की वजह से ब्रांड्स को हर दिन लोगोज, रील्स, एड वीडियोस, पोस्टर्स और डिजिटल कंटेंट चाहिए होता है, इसीलिए क्रिएटिव फ्रीलांसर्स की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है।
1: दोस्तों, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स भी फ्रीलांसिंग में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं।
0: हाँ, स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, GST फाइलिंग, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, स्टॉक मार्केट रिसर्च और बिजनेस एनालिटिक्स की डिमांड काफ़ी हाई है।
1: बहुत से स्टार्टअप्स फुल टाइम स्टाफ हायर करने की बजाय फ्रीलांस अकाउंटेंट्स और मार्केटर्स के साथ काम करते हैं, जिससे कंपनीज की जो कॉस्ट है वो भी कम होता है और प्रोफेशनल्स को फ्लेक्सिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है।
0: इंजीनियरिंग और टेक फील्ड की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, AI टूल्स, वेब डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस जैसी स्किल्स ग्लोबल लेवल पर हाईली डिमांडिंग है।
1: और AI रिवोल्यूशन के बाद तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन सेटअप और मशीन लर्निंग रिलेटेड फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं।
0: आज इंडियन फ्रीलांसर्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट्स, ऐप्स और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना रहे हैं और फॉरेन करेंसी में अर्निंग भी कर रहे हैं।
1: मेडिकल फील्ड भी इस ट्रेंड से पीछे नहीं रहा है।
0: बिल्कुल, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑनलाइन कंसल्टेशन, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, हेल्थ केयर कंटेंट राइटिंग, न्यूट्रिशनल कोचिंग और टेलीमेडिसिन सर्विसेज के थ्रू फ्रीलांसिंग कर रहे हैं।
1: फिटनेस ट्रेनर्स, योगा एक्सपर्ट्स और मेंटल वेलनेस कोचेस भी ऑनलाइन सेशंस के थ्रू ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं।
0: फ्रीलांसिंग सिर्फ अर्निंग का मीडियम नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक पावरफुल मोड बन चुका है।
1: कैसे? क्योंकि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर आगे चलकर अपनी स्मॉल टीम क्रिएट करता है, राइटर्स, एडिटर्स, डिजाइनर्स, कोडर्स और धीरे धीरे एक मिनी स्टार्टअप बिल्ड हो जाता है।
0: और गांवों और स्मॉल टाउन्स के लिए जो यूथ है उनके लिए ये फ्रीलांसिंग जो है वो एक गेम चेंजर सा बन चुका है, क्योंकि अब फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है कि आपके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए तो बस एक स्किल। अब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मेट्रो सिटीज शिफ्ट होना ज़रूरी नहीं है।
1: दोस्तों, इंटरनेट ने टैलेंट को ग्लोबल स्टेज दिया है। आज राजस्थान, बिहार या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के यंग क्रिएटर्स भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं।
0: एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फ्यूचर वर्कफोर्स का एक बड़ा हिस्सा गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग मॉडल पर काम करेगा। कंपनीज भी प्रोजेक्ट बेस्ड हायरिंग को प्रेफर कर रही है।
1: मतलब फ्यूचर में डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स और पर्सनल पोर्टफोलियो का जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है।
0: तो दोस्तों, फ्रीलांसिंग सिर्फ पार्ट टाइम काम नहीं है, बल्कि यूथ एम्पावरमेंट, इनोवेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बन चुका है।
1: अगर स्किल्स है, डेडिकेशन है और लर्निंग का पैशन है तो आज का डिजिटल वर्ल्ड जो है वो अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है।
2: अभी साले मोटे कितना सोएगा? एक अकड़ी
3: मिलते हैं क्या?
2: 4 o'clock, done.
3: Deal.

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके शब्द, उनके कर्म और उनकी प्रेरणा समय से कहीं आगे निकल जाती है।
4: और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें याद करना सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक प्रेरणा से जुड़ने के जैसा होता है।
3: तो आइए आज जन्म जयंती और पुण्यतिथि विशेष में याद करते हैं कुछ ऐसी महान हस्तियों को जिन्होंने साहित्य, सिनेमा, खेल और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी।
4: आज सबसे पहले बात उस कवि की जिसने प्रकृति को शब्दों में उतार कर हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। आज जयंती है महान हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की।
3: दोस्तों, 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी में जन्मे पंत जी हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं।
4: कहते हैं, हिमालय की वादियां, बादलों की चाल और प्रकृति की शांति उनकी कविताओं में सांस लेती थी।
3: बचपन में ही माता जी का साया सर से उड़ गया, लेकिन संवेदनाओं ने उन्हें एक ऐसा कवि बनाया जिसकी रचनाएं आज भी दिल को छू जाती है।
4: उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं पल्लव, गुंजन, युगांत, लोकनायतन, चिंदरा शामिल है। चिंदरबरा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है।
3: लेकिन दोस्तों, पंत जी सिर्फ प्रकृति के कवि नहीं थे, उन्होंने मानवता, समाज और संवेदनशीलता को भी अपनी लेखनी का केंद्र बनाया।
4: उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी मन को छू जाती है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान।
3: सच में दर्द को भी संगीत बना दें, यही तो सच्चे कवि की पहचान होती है।
4: दोस्तों, शब्दों की दुनिया से अब चलते हैं उस चमकती दुनिया की ओर जहां अभिनय सिर्फ कला नहीं भावनाओं का आईना बन जाता है।
3: दोस्तों, आज जन्मदिवस है हॉलीवुड के उस लेजेंडरी एक्टर की जिसकी सादगी और अभिनय ने दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। नाम है उनका जेम्स स्टुअर्ट।
4: 20 मई 1908 को अमेरिका में जन्मे जेम्स स्टुअर्ट हॉलीवुड के सबसे रिस्पेक्टेड एक्टर्स में गिने जाते हैं।
3: उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे की दुनिया में ले आई।
4: उनकी फिल्मों में रियलिज्म इतना गहरा होता था कि दर्शकों को लगता था जैसे स्क्रीन पर कोई अभिनेता नहीं बल्कि एक आम इंसान अपनी जिंदगी जी रहा हो।
3: उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में से हैं इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रेयर विंडो, वर्टिगो और मिस्टर स्मिथ गोज टू वॉशिंगटन।
4: उन्होंने ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते, लेकिन उनकी

0: सबसे बड़ी पहचान रही उनकी विनम्रता।
1: दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सेना में सेवा दी और अपने स्टार स्टेटस के बावजूद एक सामान्य सैनिक की तरह देश के लिए काम किया।
0: यही तो असली महानता है जब प्रसिद्धि इंसानियत से बड़ी न हो। कुछ लोग किरदार निभाते हैं और कुछ लोग अपने किरदार से जिंदगी सिखा जाते हैं।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसकी एनर्जी, डेडिकेशन और स्क्रीन प्रेजेंस ने दुनिया को चौंका दिया।
0: आज जन्मदिन है साउथ इंडियन सिनेमा एक्टर के पावरफुल पैक्ड सुपरस्टार नंदमुरी तारक रामराव जूनियर यानी जूनियर NTR का।
1: दोस्तों, 20 मई 1983 को जन्मे जूनियर NTR लेजेंडरी एक्टर और नेता NT रामाराव के परिवार से आते हैं।
0: लेकिन उन्होंने सिर्फ परिवार के नाम पर पहचान नहीं बनाई बल्कि अपनी मेहनत और टैलेंट से अलग मुकाम हासिल किया।
1: स्ट्रेंड नंबर 1, सिंहाद्री, टेम्पर, जनता गैरेज और RRR जैसी फिल्मों ने उन्हें ग्लोबल पहचान दिलाई है।
0: उनकी एक्टिंग, डांस और इंटेंस एक्सप्रेशंस ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया।
1: लेकिन दोस्तों, इतनी सफलता होने के बावजूद भी उनका ग्राउंडेड नेचर हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है।
0: उनकी जर्नी हर युवा को ये सिखाती है कि टैलेंट तभी चमकता है जब उसके पीछे डिसिप्लिन और डेडिकेशन हो। सपने वही सच होते हैं जिन्हें मेहनत नींद से ज्यादा प्यारी हो।

0: दोस्तों, सिनेमा की चमक से अब चलते हैं खेल के मैदान की ओर, जहां संघर्ष और आत्मविश्वास नई मिसालें बनाते हैं।
1: आज जन्मदिन है भारतीय महिला क्रिकेट के प्रेरणादायक हस्ती अंजुम

0: चोपड़ा का।
1: दोस्तों 20 मई 1977 को दिल्ली में जन्मी अंजुम चोपड़ा उन खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने विमेंस क्रिकेट को नई पहचान दिलाई।
0: जब महिला क्रिकेट को ज्यादा पहचान नहीं मिलती थी तब उन्होंने अपने खेल से लोगों की सोच बदल दी।
1: दोस्तों वे भारतीय टीम की कप्तान भी रही और 2007 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2014 में वे पद्मश्री से सम्मानित हुई। और दोस्तों उनके नाम एक बहुत ही बड़ा यूं कहें एक लक्ष्य उन्होंने पूरा किया था और वो था वो भारत की पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल्स में 1000 रन पूरे किए हैं।
0: मैदान के बाद भी उन्होंने कमेंट्री और एनालिसिस के जरिए खेल से अपना रिश्ता हमेशा बनाए रखा।
1: दोस्तों उनकी कहानी हर लड़की को ये विश्वास देती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती, जो मुश्किलों से लड़ जाए वही इतिहास बन जाए।
0: और अब बात है उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया किंग ऑफ रग्बी सेवन्स के नाम से जानती है।
1: आज जन्मदिन है रग्बी लीजेंड वैसिल सर्वी का।
0: 20 मई 1968 को फिजी में जन्मे सर्वी बहुत साधारण परिस्थितियों से निकलकर दुनिया के सबसे महान रग्बी खिलाड़ियों में से शामिल हुए।
1: दोस्तों उन्होंने फिजी को कई बड़ी इंटरनेशनल्स जीत दिलाई और वर्ल्ड रग्बी हॉल ऑफ फेम में भी अपनी जगह बनाई।
0: उनकी स्पीड, लीडरशिप और क्रिएटिविटी ने उन्हें एक आइकन बना दिया।
1: भारत के लिए भी गर्व की बात है क्योंकि वे भारतीय रग्बी टीम के कोच भी रह चुके हैं।
0: उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि बैकग्राउंड छोटा हो सकता है लेकिन सपने नहीं। हौसलों की उड़ान कभी छोटी नहीं होती, जो गिरकर उठ जाए उसकी हार नहीं होती।
2: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
3: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आज दोस्तों अब समय है इतिहास के उस महान योद्धा को याद करने का जिसने अपने साहस और नेतृत्व से मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी।
1: आज पुण्यतिथि है महान मराठा योद्धा मल्हार राव होलकर की।
0: दोस्तों वर्ष 1693 में एक साधारण परिवार में जन्मे मल्हार राव होलकर अपनी वीरता और नेतृत्व के दम पर मराठा साम्राज्य के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में शामिल हुए और होलकर साम्राज्य की स्थापना की।
1: उन्होंने मालवा क्षेत्र में मराठा शक्ति को मजबूत किया और इंदौर राज्य की नींव रखी।
0: लेकिन वे सिर्फ योद्धा नहीं थे बल्कि महिलाओं के सम्मान और समाज सुधार की सोच रखने वाले दूरदर्शी शासक भी थे।
1: अहिल्याबाई होलकर जैसी महान शासक को आगे बढ़ाने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
0: दोस्तों उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि महानता वंश से नहीं कर्म और साहस से बनती है। जो इतिहास बदलने का साहस रखते हैं समय भी उनके सामने सर झुकाता है।
1: तो साथियों आज हमने याद किया कुछ ऐसी महान हस्तियों को जिन्होंने शब्दों, कला, खेल और साहस से दुनिया को नई प्रेरणा दी।
0: किसी ने कविता से दिल जीते, किसी ने अभिनय से, किसी ने खेल से और किसी ने अपने पराक्रम से इतिहास रचा।
1: लेकिन इन सभी में एक बात समान थी, मेहनत, समर्पण और अपने सपनों पर विश्वास।
0: और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश भी यही है, नाम वही अमर होते हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए रोशनी बनते हैं।

0: तो साथियों चलिए रुक करते हैं 20 मई के कुछ खास इतिहास के पन्नों की ओर। 1498 में आज ही के दिन वास्को डा गामा केरल के कोझिकोड पहुंचे थे। यही वो सफर था जिसने इंडिया और यूरोप के बीच डायरेक्ट सी रूट खोल दिया।
1: और 1965 में कमांडर M.S. कोहली की अगुवाई में पहली सफल इंडियन एवरेस्ट एक्सपीडिशन ने इतिहास रचा।
0: 1932 में आज फ्रीडम फाइटर बिपिन चंद्र पाल का निधन हुआ था, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को नई पहचान दी।
1: अब बात करते हैं दुनिया की। वर्ष 1873 में लेवी स्ट्रॉस और जैकब डेविस को ब्लू जींस का पैटर्न मिला था, यानी कि आपकी फेवरेट जींस की शुरुआत यहीं से हुई।
0: साथ ही 1875 में पेरिस में मीटर कन्वेंशन साइन हुआ, जिसने दुनिया में मेजरमेंट्स का एक कॉमन सिस्टम शुरू किया। इसी वजह से आज वर्ल्ड मीटरोलॉजी डे भी मनाया जाता है।
1: दोस्तों वर्ष 1927 में सऊदी अरबिया को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस मिली थी।
0: 1932 में एविएटर अमेलिया एयरहार्ट ने अटलांटिक ओशन सोलो क्रॉस करने के मिशन की उड़ान भरी थी।
1: और वर्ष 1990 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने स्पेस से अपनी पहली तस्वीर भेजी। और दोस्तों अब रुक करते हैं खेल जगत की तेज रफ्तार खबरों की ओर।
0: और शुरुआत करते हैं एक ऐसे खेल से जहां दिमाग की चाल जीत तय करती है।
1: दोस्तों प्रतिष्ठित फिफ्थ एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 21 से 27 जून तक गोवा में आयोजित होने वाली है।
0: और इस चैंपियनशिप में भारत, चीन, जापान समेत 20 से ज्यादा देशों की टीमें हिस्सा लेंगी।
1: दोस्तों भारत अब तक इस प्रतियोगिता में 20 मेडल्स जीत चुका है और इस बार भी हमारी जो उम्मीदें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अब बात करते हैं कल हुए IPL के मैच की। दोस्तों कल मैच था राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स का। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन का लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स को दिया था, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रन बनाए और 7 विकेट से जीत दर्ज की। और आज का जो मैच है वो KKR और MI के बीच कोलकाता में शाम 7:30 पर होने वाला है।
0: और अगर शेयर मार्केट की बात करें तो NSE 23,659 पॉइंट्स पर बंद हुआ 0.17% की बढ़त के साथ। वहीं सेंसेक्स आज 75,318 पॉइंट्स पर बंद हुआ 0.16% की बढ़त के साथ। वहीं $1 आज 96.79 रुपीस पर दिखा।
1: और इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यही वादा है आपसे मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं प्रेरणा और मेरे साथी वंदना, नमस्कार।
2: युवा श्रोता अभी सुन रहे थे उनका दैनिक कार्यक्रम युवाणी FM बैंड 101.9 MHz पर। यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं शाम के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों के लिए कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक

0: ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरे टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुने स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम फिट उदयपुर।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज बुधवार है और समय हो चुका है 6:00।

0: 5 मिनट यानी समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिट उदयपुर का। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक डॉक्टर श्री प्रदीप कुमार मीणा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: सर कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर मदन मोहन मालवीय गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उदयपुर में काय चिकित्सा विभाग से मेरी स्पेशलिटी है और मैं जनरल मेडिसिन टीचिंग और क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ अभी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज में।
0: डॉक्टर साहब शुरुआत में हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत सरकार का आयुष्मान मंत्रालय आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहा है तो क्या उसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं? क्या लोग एलोपैथी से आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो भी इसको इंक्रीज कर रही है। तो जब पॉलिसी हमें सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली संख्या बढ़ती जाती है और कई सारे ऐसे डिसऑर्डर है तो उनमें आयुर्वेद का रोल काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए लोगों को रुझान बढ़ा है। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती है तो एक हेल्दी थेरेपी की तरफ लोगों को रुझान बढ़ता है, तो नेचुरली अभी काफ़ी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसमें काफ़ी बढ़ावा है।
0: डॉक्टर साहब अगर हम एलोपैथी के कंपैरिजन में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो ये कितना डिफरेंट होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन डिजीज को लेकर अगर बात करें तो
1: स्किन डिजीज का सर देखो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक तो होती है हमारे पास कई सारी इन्फेक्टिव डिसीज है और कुछ होती है ऑटोइम्यून डिसीज। मैंने जनरली ये देखा है ऑटोइम्यून जो डिसीज है, ऑटोइम्यून का मतलब होता है कि खुद की प्रतिरोधक क्षमताएं खुद के अगेनेस्ट वर्क करने लगती है। जैसे सपोज करो कि एक सोरियसिस का केस है तो हमारे यहाँ इसको कंसिडर करते हैं ऑटोइम्यून को कि कोई ना कोई इंटॉक्सिकेशन कुछ विषाक्तता बॉडी के अंदर पैदा हो चुकी है, तो उसको रिमूव करने के लिए उसको हटाने के लिए हम जनरली पंचकर्मा थेरेपी का भी सहारा लेते हैं यहाँ पे, और पंचकर्मा थेरेपी हमारे एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है जो काफ़ी अच्छा इफेक्टिव है। और दूसरा है
0: इसमें होता क्या है सर पंचकर्मा थेरेपी में?
1: पंचकर्मा थेरेपी में हम बमन करवाते, ब्रेचन करवाते, बस्ती देते हैं, नश्य देते हैं, कुछ 5 मेन प्रोसीजर है। तो उन प्रोसीजर को काफ़ी एंशियंट है, 3000 साल पहले इनको खोजा गया। तो अच्छा। उसमें क्या है, हम कुछ मेडिसिन देके उसके बाद में कुछ टॉक्सिकेशन की प्रोसीजर है, इंटॉक्सिकेशन की एक्चुअली, तो उनको टॉक्सिक मटेरियल को रिमूव किया जाता है। जैसे बमन है तो उसमें हम कुछ उसको फोर्सफुली कुछ मेडिसिन देंगे 5-7 दिन तक जो भी है हम डिसाइड करके, फिर मेडिसिन से उसको वॉमिटिंग जैसी प्रोसीजर करते हैं तो उससे दोष बाहर निकलते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं इसमें।
0: अच्छा सर, जब आप किसी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आप जिन्हें कहते हैं हर्ब्स कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं कि नॉर्मल मेडिसिन ही?
1: नहीं, प्योर हर्ब्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पे राजस्थान में। बिल्कुल आपको किसी भी तरीके की एलोपैथिक मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन अलाउ नहीं है। आप सिर्फ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर यूज में ले सकते हो, टेक्निक यूज में ले सकते हो, बाकी टोटली हम हर्बल प्रोसीजर यूज में।
0: डॉक्टर साहब ये जो जड़ी बूटियाँ हैं ये क्या मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं या फिर ये कहीं और से मंगानी पड़ती हैं?
1: नहीं, मार्केट में जैसे कई बार हमें मेडिसिन बनानी होती है, जैसे कस्टमाइज मेडिसिन बनानी होती है, तो हम यहाँ जनरली पंसारी के पास भेजते हैं उनको, और या फिर कुछ सिंगल हर्ब मेडिसिन है, सपोज कीजिए कि एक बहुत सिंपल सी मेडिसिन त्रिफला है तो उसमें 3 हर्ब होती है, तो उनको एक रेशियो बना देते हैं कि आप खुद कर सकते हो तो आप कलेक्ट कीजिए मार्केट से और बना लीजिए, और अगर नहीं मिलती है बहुत सारे यौगिक द्रव्य, यौगिक मतलब कि ऑलरेडी जो कई सारे कॉम्बिनेशन है उसमें, तो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बाकी आप ले भी सकते हो, जंगलों से खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, आप नेट पे सर्च कीजिए, उनको खुद इकट्ठा कीजिए। मेरे ख्याल में वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो हम डेफिनेटली इनको पेशेंट को बताते हैं और वो इकट्ठा करें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट होते हैं बजाय एक प्रिपेयर्ड मेडिसिन के, ऐसा मैंने देखा है।
0: आयुर्वेद पर डॉक्टर प्रदीप मीणा से ऐसे ही बातचीत जारी रहेगी, तब तक हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं ये मधुर सा गीत।

0: तो इस गाने के बाद हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, लोग एलोपैथी इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट इंस्टेंट है, और आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि किसी एक मेडिकल प्रोसीजर पे वो अपना अधिक से अधिक समय दें, और आयुर्वेदिक समय मांगती है। तो अगर कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो कितना समय बाद उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं?
1: देखिए, इसमें कई सारी भ्रांतियां हैं और कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आयुर्वेद में कोई पेशेंट आया,
0: जी
1: सपोज़ कीजिए उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि संधिवात की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, उसके घुटने दर्द कर रहे, तो ऑलरेडी वो एक काफ़ी टाइम के बाद आया, 2-5 साल तक वो सहन करेगा, काफ़ी टाइम तक एलोपैथी लेगा, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, तो उसके बाद में उसके दर्द की प्रॉब्लम हुई, उसको थोड़ा सा टाइम टेकिंग, जैसे कि हमने पंचकर्मा प्रोसीजर की,
0: हम्म,
1: 10-15 दिन तक जो भी हमने उसको सजेस्ट किया, उसकी प्रोसीजर हुई, उसके बाद में उसको उस टाइम से आराम मिलना चालू हो जाता है, धीरे धीरे पेन सबसाइड होता है, और इसके लंबे इम्पैक्ट होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, छोटे छोटे प्रिकॉशन कि आप ठीक है, आप इस तरीके की पोजीशन में मत बैठिए, ये खाना मत खाइए, वो सारा हम उसको समझाते हैं।

0: ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। सपोज कीजिए कि अभी बुखार का पेशेंट है या खांसी आ रही है, तो वो इंस्टेंट वर्क करती है आयुर्वेद वाली, ऐसा कुछ नहीं है। जुकाम खांसी हुई, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हुई, हमारे श्वास रोग से संबंधित है वो, तो वो विद इन 2 to 3 days में उसमें आराम मिल जाता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप कि हर एक चीज़ लंबी खिंचेगी, ऐसा नहीं है। 10 दिन तक पेशेंट बुखार का वेट नहीं कर सकता, इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है उनमें।
1: डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियां हेरिडिटरी होती हैं, तो ऐसी बीमारियों के ट्रीटमेंट में आयुर्वेद कितना कारगर है?
0: देखो ऐसा है कि जैसे मान लो आपने

0: हालांकि रिजल्ट उसमें लाइफ स्टाइल में उसको काफी चेंजेस देखने को मिले, मैंने ऐसा देखा है कई सारे डायबिटिक पेशेंट में, उनमें डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, उनमें एनर्जी इम्प्रूव हो जाएगी, उनके कॉम्प्लिकेशन कम देखने को मिलेंगे, इवन दो उसमें ब्लड शुगर भी काफी अच्छे से कंट्रोल होगा, लेकिन हम ये बोले कि वो टोटली इलिमिनेट हो चुकी है तो ऐसा कहना मुश्किल है। और ये देखने को मिला है जैसे डायबिटीज टाइप 2 है, तो उसमें अगर हमारे पास पेशेंट 45 to below आ रहा है, और लगभग बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि डायबिटीज़ इनहेरिटेड है जैसा आपने जिक्र किया,
1: हाँ
0: तो बहुत सारे केसेज इस तरीके का आ रहे हैं, इवन उनमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन 50 से ऊपर है तो उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 50 से below तो मैंने कई पेशेंट 450 तक के भी मैंने काफ़ी अच्छा कंट्रोल इवन क्योर तक देखा है।
1: सर, ऐसी कौन सी एक बीमारी है जिसके ट्रीटमेंट में कंपेयर टू एलोपैथी आयुर्वेदिक की सक्सेस रेट काफी बेटर है?
0: हाँ, मैं जिक्र करना चाहूँगा इसमें पाचन तंत्र संबंधी GIT सिस्टम की,
1: जी
0: GIT सिस्टम बोलते हैं उसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो डिसीज है उनमें काफ़ी अच्छा रोल है आयुर्वेद का। कई बार हम एकदम क्लियर कट बोल देते हैं कि आप सारी मेडिसिन बंद कर दीजिए, टोटली डिपेंडेंट हो जाइए, जैसे कि हम देखते हैं कि IBS की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की है, तो वो काफ़ी अच्छे से उसमें रिजल्ट देखने को मिले, पूरी तरह यहाँ तक कि एकदम ठीक होते देखे। IBD की प्रॉब्लम है उसको हमने क्योर होते हुए देखा है, हाइपर एसिडिटी है इनको क्योर होते हुए देखा है। दूसरा, कई सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट है साइकेट्री के पेशेंट है, तो उनको भी कई सारे लंबे टाइम से सेडेटिव यानी कि ये जो निद्राजनक औषधि होती है उन पे डिपेंडेंट थे, उनको ठीक होते देखा है, बिल्कुल पूरी तरह उनकी टोटल बंद करते देखा है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, एक हमारे यहाँ एक कोटेशन है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर,
1: जी बिल्कुल
0: तो आप उसको प्रिवेंशन जैसे कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे आपकी डिसीज ही रोकी जा सकती है। तो उनमें भी हमारे काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। PCOS वगैरह ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, गायनी रिलेटेड है, ओबेसिटी के डिसऑर्डर है, आप दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो कीजिए आयुर्वेद के हिसाब से तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ऐसी काफ़ी सारी बहुत सारी डिसीजेज हैं खासतौर से साइकेट्री और GIT की।
1: तो डॉक्टर साहब, ऐसी भी बीमारियां होंगी जिनका इलाज आयुर्वेद के थ्रू बिल्कुल ही संभव नहीं है?
0: बिल्कुल, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, तो इसमें हमें कमी महसूस होती है कई बार, जैसे एक्सट्रीम हम साइकेट्री की बात कर रहे थे तो कि किसी को एकदम सेडेशन देना है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है पेन किलर, एक एक्सट्रीम पेन किलर, तो हमारे
1: जी
0: पास काफ़ी तेज़ पेन किलर वाली मेडिसिन नहीं है। कई बार पायरेक्सिया मतलब फीवर का है, बुखार का पेशेंट है तो हाई ग्रेड में पहुंच गया, सपोज़ कीजिए उसको 104 फारेनहाइट में पहुंच गया, तो हम उसको थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पाते, एमरजेंसी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो हम उन्हें रेफ़र करना पड़ता है। जैसे आपने हाइपरटेंशन का जिक्र किया तो हाइपरटेंशन अर्जेंसी का केस आ गया, एमरजेंसी का केस आ गया, तो हमें रेफ़र करना पड़ता है, एमरजेंसी और पेन किलिंग, सार पेन किलिंग क्रॉनिक में हमारा अच्छा है।
1: दोस्तों, कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल रुकते हैं एक प्यारे से गीत के लिए।

0: इस गीत के बाद हम डॉक्टर साहब से अपनी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
1: अच्छा सर, जैसे जनरल फिजिशियन आपको सजेस्ट करते हैं ब्लड टेस्ट, MRI स्कैन किसी बीमारी की जड़ के लिए, तो क्या एज आयुर्वेदिक डॉक्टर आप भी इन सब टेस्टों को रिकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं?
2: बिल्कुल, डेफिनेटली इनको, ये दरअसल क्या है, ये एक टेक्निक है, टूल्स है ये।
1: हाँ,
2: तो टेक्निक्स को आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इनका ऐसा कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेशन मेडिसिन के लिए, आप टेक्निक इस्तेमाल कीजिए। हम कई बार जैसे हमारे पास पेशेंट आया तो हम प्रोग्नोसिस मतलब कि साध्यता असाध्यता, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते, किस लेवल तक बीमारी किस हद तक बढ़ चुकी है, तो उसके लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेफिनेटली आजकल काफ़ी प्रचलन में है ये
1: टेस्ट काफ़ी प्रचलन में है। ठीक है, तो इनके लिए भी आयुर्वेदिक के कोई अलग टेस्टिंग लैब्स वगैरह कुछ होती हैं कि उन्हीं नॉर्मल डायग्नोस्टिक लैब जो होते हैं उन्हीं में टेस्ट?
2: नॉर्मल डायग्नोस्टिक लैब में कुछ एक टेस्ट यहाँ पे पहले इजाद हुए थे, जैसे सपोज करो हमारे यहाँ अष्टविध परीक्षा है, दसविध परीक्षा है, नाड़ी परीक्षा के है, मूत्र परीक्षा के भी है, और हमारे स्रोतस परीक्षा है। इवन देखा जाए तो आयुर्वेद में भी काफ़ी, लेकिन काफ़ी डीप इंटेंस नॉलेज चाहिए उसके लिए, उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी आजकल कई सारी बीमारियाँ नई ऐसी आ चुकी है कि हमें

0: मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे स्टूडेंट्स को भी, तो कुछ हद तक उनको इस्तेमाल कीजिए जहाँ ज़रूरत पड़े, और बाकी हम हमारे अपने डायग्नोस्टिक टूल्स लें तो उनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे बात पित्त कफ के हमारे टूल्स हैं, तो वो सारे बताए हुए हैं, स्रोतस के बताए हुए हैं, अष्टपित दसपित सफिशियंट है, पर फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल कीजिए।
1: सर, अभी आपने अलग अलग प्रशिक्षण की बात की, जिसमें एक आपने नाम लिया नाड़ी प्रशिक्षण।
0: हाँ,
1: सर, जब भी हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं कि तो ये शब्द हमेशा आता है कि नाड़ी प्रशिक्षण करती हैं, वो एग्जैक्टली होता कैसे और इसका महत्व क्या है, और वो है क्या ये प्रोसीजर?
0: देखो ये सबसे बड़ा है, इसमें एक चीज़ होती है, आपको कंटिन्यूअस एफर्ट, रेगुलर प्रैक्टिस, जैसे आप कंटिन्यूअस देखिए नाड़ी को देखिए, तो आपको वात पित्त कफ की गति का पता चलता है, स्टेटस का पता चल पाता है। हालांकि एक बेहद टफ प्रोसीजर है, क्योंकि दरअसल आपको तीन उंगलियों से आपको पहचान करनी होती है आपको, फिर उसमें आपको काफ़ी लंबा अनुभव, आप जनरली देखोगे पल्स को तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सिंपल पल्सेशन तो हमेशा होगा, छोटी छोटी बारीकियाँ होती है, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। हाँ, नए के लिए ये पहचानना काफ़ी मुश्किल है। आमतौर पे इसको क्या है, आजकल यूज़ में कम लिया जाता है
1: अच्छा
0: कंपेरेटिव, क्योंकि ये डीप प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है।
1: डॉक्टर साहब, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है और आने वाले समय में लू चलने की भी संभावना है, तो ऐसे कौन से हर्ब हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर रख सकते हैं और अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रख सकते हैं?
0: यहाँ पे हमारे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आप सिंपल हर्ब यूज़ में ले सकते हो, सपोज करो कि आपने सौंफ का इस्तेमाल कर लिया,
1: अच्छा, सौंप का।
0: हाँ, धनिया का इस्तेमाल किया, पुदीना का इस्तेमाल किया, इनके रेडीमेड अर्क भी आते हैं, पर अर्क कॉस्टली मिलते हैं,
1: हाँ
0: तो जनरली इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपके है कि बाजार में सस्ते मिलते हैं, लघु शिश्नकर मिल गया, चंद्रकला रस मिल गया, इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा सड़ंग पानी है, एक हर्ब आती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इससे भी बढ़िया, आपको सस्ता इस्तेमाल करना है तो आप सिंपल हाइड्रेट रहिए, 2 से 3 लीटर पानी पीजिए पर डे, थोड़ा ठंडे में रहिए। और दूसरा है, आप सुबह पहले योग कीजिए, योग में जैसे आप शीतकारी कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, शवासन कीजिए, सुबह आप 10-15 मिनट के लिए आप इनका इस्तेमाल कीजिए पेट साफ होने के बाद में, और ये आपके लिए बॉडी को अंतर से बिल्कुल मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो हमारे जो आप जैसे आपने जिक्र किया कि ताप का कंसेप्ट है, तो एक तो बाहरी तापमान हो गया, वो तो कांस्टेंट हो गया, उसको हम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदर बॉडी की मेटाबॉलिज्म भी एक ताप जनरेट करती है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये योग है, वो काफ़ी अच्छे, शीतकारी योग खासतौर से प्राणायाम में। आप भ्रामरी भस्त्रिका कुंभक रेचक ये मत कीजिए, अवॉइड कीजिए आप सूर्य नमस्कार को भी, उससे भी काफ़ी ताप पैदा होता है, वो सर्दियों के लिए अच्छा है, और एक्सरसाइज मत कीजिए, तो आप इवन फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन ये आपके लिए है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हम जब पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने के लिए जाते हैं, तब हमें वहाँ कई ऐसे स्टोर मिलते हैं आयुर्वेद के, जो ये दावा तो करते हैं कि हम आपके ये बीमारी ठीक कर देंगे, वो बीमारी ठीक कर देंगे, लेकिन उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, फिर भी लोग उनसे आँख बंद करके खरीदते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि उनसे खरीदें या ना खरीदें?
0: बिल्कुल, ये आपने काफ़ी संवेदनशील मुद्दे पे बात की सर, ये इनको टोटली सरकार को इन पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आज एक BMS का एक स्कॉलर निकलता है तो उसको 5-6 साल लगते हैं, इक्वल टू MBBS, और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है तो 3 साल लगते हैं उसको, 9 साल। एक आप सपोज कीजिए, एक बाहर बैठा हुआ व्यक्ति बेच रहा है, उसको क्या पता कि क्या बात पित्त कफ है, किस तरीके से मैनेज। मैं कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बेहद टफ है, आपके पास में एलोपैथी में जाते हो तो एक स्टैंडर्डाइज्ड तरीका मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ ऋतु काल देश बल प्रकृति सबके अकॉर्डिंग्स हर एक चीज़ को देखते हुए आपको मेडिसिन लिखनी होती है, तो इतने सारे कॉम्बिनेशन जब आप बनाते हो तो पर पर्सन हर एक चिकित्सक के दिमाग में अलग अलग थॉट्स पैदा होती है, और उनके हिसाब से वो चिकित्सा करता है कि हमें इसके लिए ये बेस्ट सुटेबल मेडिसिन होगी। तो ऐसी सिचुएशन में एक कॉमन पर्सन जो बैठा हुआ है और वो उसको बेच रहा है, तो उनसे बिल्कुल मैं एकदम टोटल ही मना करूँगा, आप कभी भी ऐसे चक्कर में ना पड़े। आज सरकार ने यहाँ आयुर्वेद की तकरीबन

0: 3,500 चिकित्सालय औषधालय है राजस्थान, राजस्थान में देखा जाए तो आप वहाँ पे जाइए, आपको तकरीबन 60-70 मेडिसिन आपको हमेशा अवेलेबल होती है, कई सारी मेडिसिन आपको सफिशेंट मेडिसिन मिल जाएगी। तो आप उनके पास क्यों जाते हो,
1: बिल्कुल
0: वो उसके पास ऐसा क्या चमत्कार है जो आप उसके पास जा रहे हो? आप उसके काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आपको देना पड़ेगा, आप बिल्कुल मत जाइए। आप पास में चिकित्सक के पास जाइए, उनसे बोलिए, उनसे रिकमेंड कीजिए कि कृपया हमें तो अंदर ही की दवाइयाँ दे, या फिर जैसा भी आपकी कंडीशन है तो आप उनसे सलाह लीजिए, बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए इनको, टोटली नेगलेक्ट।
1: डॉक्टर साहब के साथ इस चर्चा को हम आगे भी यूं ही जारी रखेंगे, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और साथ ही साथ काया चिकित्सा के MD भी हैं। तो सर, जिस तरह से स्टूडेंट एक MBBS परीक्षा की तैयारी करता है डॉक्टर बनने के लिए, तो क्या उसी तरह का एक्साइटमेंट आयुर्वेदिक चिकित्सा को लेकर भी है स्टूडेंट्स के बीच में?
1: बिल्कुल बिल्कुल, रुझान है। हमारे यहाँ पे सारी सीटें फिल होती है और इवन प्राइवेट कॉलेज है उनमें भी किसी में कोई सीट हमेशा अच्छी रैंक पे मिलती है। जस्ट MBBS के बाद आयुर्वेद वाली फिल होती है, जो आजकल नीट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है, उसमें इसके सेकंड ऑप्शन पे इसी को फिल किया जाता है। रुझान है इसमें।
0: डॉक्टर साहब, इस साल के यूनियन बजट में भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय को करीब 4,500 करोड़ के आसपास का फंड अलोकेट किया है, ताकि वो आयुर्वेद को लेकर रिसर्च, डेवलपमेंट एंड प्रमोशन संबंधित कार्य और तेजी से कर सके। तो क्या अब इन एफर्ट्स के आउटकम्स अब दिखने शुरू हो गए हैं फील्ड में? आपके कोई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें?
1: श्योर। जैसे अभी हेल्थ पॉलिसी नई वाली, तो इसमें एक नेशनल आयुष मिशन चालू किया है, तो उसके थ्रू बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कई सारे नए ये आरोग्य सेंटर खोले गए। इसके अलावा अभी देखा जाए 2022 में एक WHO के द्वारा एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला गया जामनगर में, तो वो एक काफ़ी माइलस्टोन है। दरअसल एक तो चीज़ होती है कि हम यहाँ पे आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, लोकली जानते हैं, और एक उससे भी बड़ी चीज़ होती है कि आप ग्लोबल स्टैंडर्डाइज कर रहे हो आयुर्वेद को। तो ये काफ़ी अच्छा एफर्ट था, WHO सेंटर है वो जामनगर में खोला गया है। और दूसरा है एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट चालू किया गया है, जैसे CSC PSC पे भी आयुर्वेद चिकित्सक बैठते हैं, तो उनको वहाँ पे बिठाया गया है। और अभी एक चालू हुआ था 2017 में मेरे ख्याल में, नमस्ते पोर्टल चालू किया गया। तो हमारी टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे कि संस्कृत बेस्ड होती है, तो वो जो उसको मॉडर्नाइज किया गया, उस टर्मिनोलॉजी को स्टैंडर्डाइज किया गया, फिर नमस्ते पोर्टल पे डाला गया। उसके बाद में उसको ICD-11 जो कि WHO यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11 प्रोटोकॉल में डाला गया, तो उस मॉड्यूल को वहाँ पे भेजा गया WHO में। WHO ने लगभग मोस्ट ऑफ चीज़ों को एज इट इज स्वीकार किया है। और 2025 में अभी देखें तो आप उसमें मॉड्यूल सेकंड में जाइए तो उसमें ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपको आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी एज इट इज मिलेंगी। यानी कि हम यहाँ पे कोई रिसर्च करते, सपोज कीजिए कि हमने बोला, आपने बोला कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हमने बोला आम बात, तो आम बात को बोलेंगे तो WHO या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे एक रिसर्च लिखी हुई है जो आयुर्वेद में हुई है। तो ये काफ़ी अच्छा माइलस्टोन है वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइजेशन के लिए, आयुर्वेद के लिए।
0: सर, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई पेशेंट का केस जिसको आपको हैंडल करने में बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, जो आपके लिए एक मेमोरेबल चीज़ बन गई हो?
1: मैंने जो आपसे GIT की बात की, इस सिस्टम के भी IBS के कई पेशेंट देखे, कुछ तो इवन केरला के भी पेशेंट थे मेरे पास में।
0: सर, केरला तो हम माना जाता है,
1: हम माना जाता है, लेकिन वो पेशेंट शायद यहाँ पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनके कई लंबे टाइम तक GIT प्रॉब्लम के थे। और इसके अलावा ऑर्थराइटिस के, साइटिका के पेशेंट ये हमारे पास मोस्टली आते रहते फ्रिक्वेंटली पर डे। और डायबिटीज़ में भी काफ़ी अच्छे थे, इवन कुछ सोरियसिस के पेशेंट थे ये भी काफ़ी अच्छे थे, और कुछ स्किन डिसीज़ के, सोरियसिस के काफ़ी अच्छे देखने को मिले। कुछ एक ऐसे थे कि हमें एक बार लगा, जैसे एक केस था शायद वो मॉलिस्कम कॉन्टेंजियोसम का था या बार्ट्स का था, तो मैंने उसको रेफर करना चाहा कि आप चले जाइए, सर्जिकल रिमूवल है इसमें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने बोला, सर मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन मैं इसको मेडिसिन पहले भी, मैं सीरम थेरेपी करवा चुका हूँ और मैं अहमदाबाद यहाँ पे मैंने दिखा चुका हूँ, तो लेकिन मैं सिर्फ मेडिसिन के लिए आया हूँ। मैंने उनको सिर्फ 2-3

0: दी, मुझे भी इतना फैत नहीं था। फिर उन्होंने कि क्या ये ठीक हो पाएगा, जैसे हमने उसके बेस पे चलते लिटरेचर के बेस पे, तो उन्होंने जो मेडिसिन ली, मेडिसिन के बाद में वो, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली कई बार ऐसा होता है कि हम उसको वापस कितने एक्सेस कर पा रहे हैं, उसके बाद वो पेशेंट अभी भी आते रहते हैं मेरे पास और कई सारे दूसरे पेशेंट को भेजते, वो बिल्कुल ठीक है, उनके 30-40 वार्ड थे फेस पे। तो वो एक मुझे लगा काफ़ी अच्छे, बहुत सारे हैं यहाँ पे, अच्छी खासी ओपीडी होती है हमारे पास, जो हॉस्पिटल है राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसमें फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छी ओपीडी होती है, बहुत सारे केसेज हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया।
1: सर, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश?
0: धन्यवाद। जो आपने लास्ट पॉइंट पे फोकस किया कि एक तो ऑथेंटिक बीएमएस या बीएमएस एमडी के पास जाएं, आयुर्वेद की मेडिसिन लेनी है, दूसरा जो मेडिसिन लेनी है वो आप जीएमपी सर्टिफाइड ले, सिर्फ इसके बेस पे ना ले, या एफडीए अप्रूवल है, वो आपको कॉस्टली पड़ेंगे और उनकी मेडिसिन है वो न्यूट्रिशन वाली मेडिसिन अननेसेसरी कॉस्टली होती है। बेटर है आप जीएमपी सर्टिफाइड ले और प्रैक्टिशनर के पास जाएं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और भरोसा रखें, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम तक मेरी इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेंटर पे भी मैंने वर्क किया, तो मैंने इस चीज़ को फील किया कि मैं ट्रीटमेंट आयुर्वेद का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, और आप इस तरीके से, और बिल्कुल हार्मलेस है मोस्ट
1: पेशेंस
0: ऑफ टाइम,
1: रखने की
0: फिर भी
1: ज़रूरत है,
0: हाँ
1: पेशेंस
0: बिल्कुल
1: रखने की
0: बिल्कुल
1: ज़रूरत
0: सर,
1: है।
0: पेशेंस।
1: तो जैसा कि आपने सुना श्रोताओं, आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट इसका काफ़ी अच्छा है और आपको सिर्फ ऑथेंटिक जगहों से ही इसका ट्रीटमेंट, अपनी दवाइयाँ लेनी है। तो इसी के साथ हम कार्यक्रम संपन्न करते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद सर,
1: थैंक यू सो मच।
0: नमस्कार
1: थैंक यू।
0: सर।

दोस्तों, ये था आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम फिट उदयपुर। इसमें आज आपके बीच थे आयुर्वेद महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार मीणा। इनसे भेंट की मनोज अम्बिश ने। यह है एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेडियो लेक सिटी का लोकल विंडो। आइए चलें म्यूजिक, मस्ती और मनोरंजन के संसार में म्यूजिकल बिट के साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार।

दोस्तों, गर्मियों की सुनहरी सुबह हो या रातों भरी तारों भरी रात, छुट्टियों का मौसम अपने साथ लाता है ढेर सारी यादें और ढेर सारी बातें, ढेर सारी मस्ती और परिवार के साथ बिताए जाने वाले वो खूबसूरत पल जो जिंदगी भर दिल में बसे रहते हैं। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त आरजे विवेक। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के इस छोटे से सफर में हम बात करेंगे कि बच्चे गर्मी की छुट्टियों को कैसे यादगार बना सकते हैं, मोबाइल से दूर रहकर अपने परिवार के साथ क्या क्या मज़ेदार काम कर सकते हैं, और साथ ही सुनेंगे हिंदी सिनेमा के बेहद शानदार जोशीले नगमे।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पुलिस?
5: मिस सीमा
4: जी,
5: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
4: क्यों, लेकिन मैं
5: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
4: डिजिटल अरेस्ट?
5: 1 लाख दो, बच जाओगे।
4: इतने पैसे?
5: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
4: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
6: हेलो मम्मा।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: दोस्तों, छुट्टियों की शाम अगर परिवार के साथ छत पर बिताई जाए, दादी नानी की कहानियां सुनी जाए, तो ज़िंदगी की असली खुशियां वहीं मिलती है। आजकल हम वैसे ज़्यादातर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ बैठने के लिए कुछ वक्त फिर भी निकाल ही सकते हैं, जो एक खूबसूरत अदा देता है, अंदाज देता है।

दोस्तों, इस गाने के साथ ही एफएम लोकल विंडो का समय बस यहीं तक। यह है एफएम रेडियो लेक सिटी, एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से हम रिले करेंगे कार्यक्रम जयमाला। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: भारती देश की सुरीली धड़कन कुछ ही पलों में फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: अभी आपने फना फिल्म में महालक्ष्मी को सुना, संगीत जतिन ललित का था बोल प्रसून जोशी के। अब सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत और संगीत कैलाश खेर का था। अब सुनिए इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में महबूब का लिखा गीत, आवाजें कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद सलामत और डोमिनिक की। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती।
1: इस बार पापा लाइए 3,000।
2: क्यों भाई?
1: मेरी पॉकेट मनी।
2: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
1: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं? हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
2: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
1: अपना मोबाइल लाओ।
2: ले ले।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।
6: सुबह जलाओ, शाम जलाओ, देवदर्शन धूप।
7: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देवदर्शन धूप।
8: कार्यक्रम में अब हम फौजी भाइयों को सुनवा रहे हैं परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।

अभी आपने लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को फिल्म मिस्टर नटवरलाल में सुना। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राजेश रोशन। और अब जयमाला में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और फिर वापस लौटते हैं अपने कार्यक्रम में।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।

अभी आपने बंधना फिल्म में अलका याग्निक और कुमार सानू को सुना। संगीत नदीम श्रवण का था, बोल समीर के। और अब यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश शान फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले ने, संगीत तैयार किया है आरटी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम इंद्रधनुष। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राग अनुराग। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राग यमनची चोटी पर आधारित गीत से। फिल्म का नाम है आए दिन बहार के। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तर्ज बनाई है और गीतकार है आनंद बख्शी। स्वर दे रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले।

0: अभी आपने राग यमन झिझोटी पर आधारित गीत सुना, अब सुनिए राग भैरवी पर आधारित गीत। आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, रवि के संगीत निर्देशन में गीत की रचना की है प्रेम धवन ने।
1: ये पर्दा हटा दो।

ये था राग भैरवी पर आधारित गीत। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं राग रागेश्री पर आधारित एक युगल गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, संगीत रवि का, पोल असद भोपाली के।

सुरीला गीत आधारित था राग रागेशी पर। इसी के साथ ही राग अनुराग कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन।

0: आज के कार्यक्रम में सुनिए शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन, खरीदा हुआ दुख।
1: खाने को चाहिए मन भर, लेकिन काम की ना तो नहीं मरती है। दाल एकदम लग गई, अब खाना नमक से रोटी।
2: तुम्हीं ने तो कहा था कि खाने पीने की चीजें ना छुआ करो, फिर क्यों डांट रही हो?
1: डांटू नहीं तो क्या पूजा करूं? दुनिया भर का मैल लपेटे रहती है हाथों में, इसलिए मना किया था। सरसी से बटलोई तो उतार ही सकती थी, लेकिन तुम लोग तो मेरा खून पीने पर उतारू हो। जैसी तू वैसी मुन्नी, जैसा धीरू वैसा वीरू, इसी से कोई सहारा नहीं।
2: सबका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? जब देखो तब डांटती रहती हो।
3: हो गया सवेरे सवेरे महाभारत शुरू। कभी तो बच्चों से मीठे बोल बोल दिया करो शारदा।
1: हाँ हाँ, सारा दोष मेरा ही तो है, अपने बच्चों के लक्षण नहीं देखते।
3: तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे बच्चे मेरे ही हैं, तुम्हारे नहीं। लाओ थाली परसो, दफ्तर को देर हो रही है।
1: दाल जल गई, सब्जी है नहीं, नमक से रोटी खाओ तो दे दूं।
3: रोज कोई ना कोई टोटा ही पड़ा रहता है, गृहस्थी चलाने का जरा भी शऊर नहीं।
1: मांग जांच कर जैसे गृहस्थी चलाती हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी जगह कोई और होती तो भूखा रहना

0: ठीक है देवी जी, सवेरे सवेरे मूड ना खराब करो। चुन्नी, स्कूल नहीं गई तुम?
1: नहीं।
0: क्यों, इम्तिहान सर पर है?
1: तुम्हें आज पता चला? 4 दिन से चुन्नी पढ़ने नहीं जा रही है, कहती है टीचर जी डांटती हैं।
0: मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बात है चुन्नी, क्यों डांटती हैं टीचर जी?
1: हमारे पास यूनिफॉर्म जो नहीं है, टीचर जी कहती हैं जो लड़की यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आएगी उसे दिन भर बेंच पर खड़ा रखेंगे, खड़े खड़े हमारे पैर दुख जाते हैं बाबूजी।
0: पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बस यूनिफॉर्म चाहिए, दर्जनों किताबें चाहिए, कॉपियां चाहिए, तमाशा बना रखा है। ठीक है, फंड से रुपए निकाल कर प्रबंध कर दूंगा। चुन्नी जाओ अपना पाठ याद करो, इम्तिहान तो देना ही है।
1: जाती हूँ, आज कॉपियां भी ले आना बाबूजी।
0: है? लगता है कोई स्कूल नहीं गया, मुन्नी धीरू बीरू गली में खेल रहे हैं। तुमने बच्चों को सर पर चढ़ा कर बिगाड़ रखा है, देख लेना भीख मांगेंगे भीख।
2: मैंने बिगाड़ रखा है? किसी के पास किताब नहीं, किसी के पास कॉपी नहीं, किसी के पास साफ सुथरे कपड़े नहीं, ये मेरी गलती है? बच्चे दिन भर गली में लफंगों की तरह खेलते रहते हैं, ये मेरा दोष है?
0: नहीं जी, तुम्हारा क्यों होगा, सारा दोष मेरा है। शादी क्या की, जंजाल में फंस गया, जितना कमाओ कम है, जब देखो तब कंगाली। ठीक है मैं जा रहा हूँ दफ्तर।
1: टिफिन ही लेते जाओ।
0: कोई जरूरत नहीं है, कैंटीन में खा लूंगा।
2: ये क्यों नहीं कहते, चटपटा खाने का मन है? ठीक है, पूरी तनख्वाह कैंटीन में ही उड़ाओ, बीवी बच्चे भूखे नंगे रहे तुम्हारी बला से।
0: ऐसा कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कैंटीन में पैसे बहाता हूँ, पूरे पैसे तुम्हारे हाथ में रख देता हूँ, तब तो ये हाल है, अगर उड़ाने लगूं तो जीना दुभर कर दो। लाओ टिफिन दो, अगर घर में हो तो प्याज और नमक रख देना, नहीं तो सूखी रोटी ही खा लूंगा।
1: आपका टिफिन तैयार है।
3: थैंक यू शीला दीदी, कुछ साग सब्जी भी रखी है, या नमक और प्याज से ही काम चलाना पड़ेगा।
1: लगता है आप भी मिस्टर और मिसेस वर्मा की बातें सुन रहे थे।
3: अरे भाई बहरे तो है नहीं, पड़ोसी की बातें सुनाई पड़ ही जाती हैं। अब ये बात दूसरी है कि हम उनकी कड़वी बातें सुनते हैं और वो लोग हमारी मीठी मीठी बातें हैं। वर्मा जी जरूर अपनी श्रीमती जी से कहते होंगे कि तुम्हारी जुबान हरी मिर्च है और शीला जी की जुबान बंगाली रसगुल्ला।
1: वर्मा जी ना भी कहते हो लेकिन आपने तो कह ही दिया, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप डॉक्टर ऑफ फ्लैटरी यानी डॉक्टर ऑफ चापलूसी हैं।
3: इस डिग्री के लिए शुक्रिया मैडम, बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जिंदगी में खुशी की कुंजी है घर वाली की चापलूसी।
1: ये आपके बड़े बूढ़े कह गए होंगे, हमारी बड़ी बूढ़ी कह गई है अगर सुखी जीवन चाहती हो तो चापलूस पतियों से सावधान।
3: ये तो वही बात हुई कि फाटक पर जैसे बोर्ड टंगा हो कुत्तों से सावधान, गए शौहर ना हुआ दुम हिलाने वाला।
1: इसका फैसला बाद में होगा, पहले दफ्तर जाकर अपने साहब के सामने दुम हिलाइए, अगर देर हो गई तो बेकार ही झूठे बहाने बनाने पड़ेंगे।
3: तुम्हारा मतलब है जब ओवरटाइम करने में मुझे दफ्तर से घर आने में देर हो जाती है तो मैं तुमसे यहाँ आकर झूठे बहाने बनाता हूँ?
1: हाय, जब तुम नाराज होते हो तो कितने अच्छे लगते हो।
3: और तुम इसलिए मुझे जानबूझकर चिढ़ाती हो।
1: चिढ़ाने में मजा आता है ना।
3: वाह रे तुम्हारा मजा, अब अगर मैं भी तुम्हें।
1: अरे रे, अरे क्या करते हो, छोड़ो, अगर पिंकू आ गया तो।
3: पिंकू आज स्कूल नहीं गया क्या?
1: गया क्यों नहीं।
3: फिर तुमने?
1: डियर इसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, पिंकू का नाम ना लेती तो तुमसे छुटकारा कैसे मिलता।
3: ठीक है इस वक्त तो बच्चा खा ही गया, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं शीला।
1: आपकी बात का कभी बुरा माना है जो आज मानूंगी।
3: पिंकू पर जरा कंट्रोल रखो।
1: क्या हुआ, क्या स्कूल से कोई शिकायत आई है?
3: नहीं नहीं, लेकिन अगर वो वर्मा जी के बच्चों के साथ इसी तरह खेलता रहा तो स्कूल से भी शिकायत आने लगेगी, धीरू वीरू गंदी गंदी गालियां भगते हैं, अगर अपने पिंकू ने भी सीख ली तो।
1: क्या करूं आप ही बताइए, कई बार पिंकू को मना कर चुकी हूँ, अब स्कूल से आकर घर में बंद होकर तो बैठा नहीं रह सकता है।
3: कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो तुम मिसेस वर्मा से कहो ना कि उनके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
1: आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वे जानती नहीं, कई बार इशारा कर चुकी हूँ, वो कभी वर्मा जी को दोष देती हैं और कभी अपने भाग्य को कोसती हैं। बाबा रे बाबा, उनके साथ जब उनके बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं तो यही डर लगा रहता है कि तोड़फोड़ न करने लगे। मैंने आपको बताया नहीं, एक बार धीरू पिंकू की पेंसिल रबर ही चुरा कर ले गया था।
3: तुम साफ क्यों नहीं कह देती हो कि बच्चों के यहाँ न लाया करें?
1: कहना ही पड़ेगा, मैं तो कहती हूँ कोई और मकान देखो, कम से कम पड़ोस तो अच्छा मिले।
3: मकान

0: मकान छोड़कर भागना समस्या का हल नहीं है शीला।
1: अच्छा हो हम अपने पड़ोसी यानी मिस्टर वर्मा के परिवार को ही सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें।
2: क्या हो रहा है शीला बहन?
3: पिंकू के लिए शर्ट सिल रही हूँ। आओ बैठो।
2: तुम तो सिलाई कढ़ाई बुनाई हर काम में होशियार हो, तुम्हें फुर्सत भी रहती है, हमें तो दम लेने का भी वक्त नहीं मिलता।
3: ऐसा क्या काम है तुम्हारी गृहस्थी में शारदा बहन?
2: अब एक हो तो बताऊं, हम तो ये जानते हैं कि सुबह से उठकर रात तक कमर सीधी नहीं कर पाते।
3: घर के काम में बच्चे हाथ नहीं बटाते?
2: नहीं जी, उल्टे काम बढ़ाते हैं। अब बहन इतनी समय तो है नहीं कि नौकरानी रखें महरी रखें।
3: महरी बहरी तो हमारे यहाँ भी नहीं है, झाड़ू बुहारू भी खुद ही करती हूँ। पिंकू स्कूल गया, गुप्ता जी दफ्तर गए, बस खा पी कर बर्तन मांजे चौका धोया और उसके बाद फुर्सत ही फुर्सत।
2: अपने अपने भाग्य की बात है बहन, हमारे भाग्य में आराम है ही नहीं। अब आज ही किलो नास पीती चुन्नी की मारे दाल जल गई, वर्मा जी भूखे दफ्तर चले गए, अब हमसे तो सूखी रोटी चबाई नहीं जाती। अचार डाला था सो बच्चों ने गंदे हाथों से छू छू कर बर्बाद कर डाला।
3: कोई बात नहीं, अचार हमारे यहाँ है।
2: इसीलिए तो आई हूँ बहन, तुम भी सोचती होगी कि अच्छी पड़ोसी मिली, रोज कुछ न कुछ मांगने आ जाती है, मगर क्या करें बहन, बिना मांगे काम भी तो नहीं चलता।
3: नहीं नहीं बहन, एक दूसरे के सुख दुख में काम ना आए तो पड़ोसी कैसा। अच्छा बताओ, आम का अचार दूं या नींबू का?
2: तुम्हारा मिर्च का अचार तो कभी भूल ही नहीं सकती। शीला बहन ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा तीनों तरह का दे दो।
4: तुम यहाँ आकर बैठ गई अम्मा, वहाँ मुन्नी और धीरू लड़ रहे हैं।
2: लड़ रहे हैं तो अम्मा क्या करे, अम्मा का खून पीकर ही चैन आएगा तुम लोगों को।
3: मैं अभी अचार ला रही हूँ, एक मिनट में।
4: अम्मा ये मशीन कितनी अच्छी है, जरा चिल्लाकर देखें।
3: अरे अरे ये क्या कर रही हो चुन्नी, सुई टूट जाएगी। तुमने भी मना नहीं किया शारदा बहन।
2: हम क्या जाने कि मशीन छूने से टूट जाएगी, बच्ची का मन था सो जरा चला ली। चल चुन्नी
3: प्लेट खाली करके जरा जल्दी ही भिजवा देना।
2: घबराओ नहीं बहन, शाम को जरूर भेज दूंगी।
3: ये भी अच्छी रही, दो तो आफत न दो तो आफत, कभी आटा मांगेगी कभी दाल, कभी मसाला मांगेंगी कभी घी, समझती है हमारे यहाँ मुफ्त का आता है। अच्छा पड़ोस मिला है। चलो मशीन तो ठीक है।
4: आंटी जी ये प्लेट
3: ले आई? अरे ये तो टूट गई।
4: अम्मा अचार लेकर गई तो मुन्नी धीरू और वीरू छीना झपटी करने लगे सो अचार भी गिर गया और प्लेट भी टूट गई। माने प्लेट भेजी है, थोड़ा अचार और मंगाया है।
3: कह देना अचार अब नहीं है और ये प्लेट भी ले जाओ।

0: मैं बहुत शर्मिंदा हूं गुप्ता जी, आज बच्चों ने आपकी प्लेट तोड़ डाली।
1: वर्मा जी, ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे भाई, बच्चे हैं, तोड़ फोड़ तो करते ही रहेंगे, और फिर प्लेट तोड़ी है कोई?
0: ये आपकी शालीनता है गुप्ता जी, सच मानिए मैं तो इन बच्चों से तंग आ गया हूँ।
1: शायद बच्चों का इतना दोष नहीं जितना आप समझते हैं।
0: क्या मतलब?
1: मतलब बाद में बताऊंगा, पहले चाय पीजिए। अरे भाई शीला, चाय में क्या देर है?
2: एकदम तैयार है, लीजिए।
0: अरे आप तो चाय के नाम पर पूरा खाना ले आई भाभी जी, बर्फी, समोसे, दाल मोट, पकौड़ी।
2: ऐसा तो कुछ भी नहीं है वर्मा जी, दफ्तर से आने के बाद नाश्ते में कुछ तो होना ही चाहिए।
0: काश हमारी श्रीमती जी भी ये समझ सके। नाश्ते की कौन कहे, हमें तो कभी कभी चाय भी नसीब नहीं होती।
1: लीजिए चाय पीजिए। वर्मा जी, हम लोग बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहते थे। देखिए वैसे तो आपका घर है, आपके बच्चे हैं, लेकिन पड़ोसी होने के नाते
0: कहिए कहिए, निसंकोच कहिए गुप्ता जी।
1: आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं।
0: जानता हूं, वो स्कूल नहीं जाते, गली में खेलते रहते हैं, गालियां बकते हैं, चोरी करते हैं। मुझसे कुछ छुपा नहीं है गुप्ता जी, अब मैं क्या क्या देखूं, शारदा बच्चों पर ध्यान ही नहीं देती।
2: सिर्फ शारदा बहन को दोष देना ठीक नहीं, अकेली माँ क्या क्या कर सकती है। अगर पिंकू के भले बुरे पर ये भी निगाह न रखें तो।
1: मैं भी ये कहने वाला था।
0: ये न समझे गुप्ता जी कि मुझे बच्चों की चिंता नहीं है, मगर समझ में नहीं आता क्या करूं, सुबह होते ही घर में कला शुरू।

0: हो जाती है, इसका असर बच्चों पर तो पड़ेगा ही।
1: बाबूजी, अम्मा बुला रही है, धीरू ने मुन्नी की कॉपी फाड़ डाली, मुन्नी धीरू को मार रही है।
2: कोई बात नहीं, जरा अम्मा को यहीं भेज दो, कहना आंटी जी ने बुलाया है। लो चुन्नी, ये दाल मोट लो, सब लोग मिल बांट कर खाना, लड़ना नहीं।
3: आप बहुत अच्छी आंटी जी, अम्मा हमें कभी कोई अच्छी चीज खाने को नहीं देती।
0: देखा आपने, ज्यादा से ज्यादा कमाई करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी बच्चे छोटी छोटी चीज के लिए नदी दे रहते हैं।
4: आपने कभी सोचा है वर्मा जी, ऐसा क्यों?
0: रोज कोई ना कोई बच्चा बीमार ही रहता है, सारा बजट गड़बड़ा जाता है, शारदा को भी ढंग से गृहस्थी चलाने का शऊर नहीं।
5: मेरी बुराई के अलावा और कुछ आता है तुम्हें?
6: शिकायत तो मुझे होनी चाहिए कि माँ बाप ने ऐसे खूंटे से बांध दिया जहाँ ना खाने पीने का सुख है ना पहनने ओढ़ने का।
2: शारदा बहन, दुख तो आप लोगों ने खुद खरीदा है, हम लोगों के आंगन के बीच बस एक छोटी सी दीवार है, इधर और उधर में जमीन आसमान का फर्क क्यों है जानती हैं?
6: इसमें जानने को क्या है, सब पैसे की माया है, आप लोगों की आमदनी ज्यादा है और हम लोगों की कम।
4: ये आपका भ्रम है भाभी जी, मेरा और वर्मा जी का एक ही ग्रेड है। ये जरूर है कि थोड़ा बहुत ओवरटाइम में भी मिल जाता है।
0: ओवरटाइम तो मैं भी करता हूँ गुप्ता जी, फिर भी पूरा नहीं पड़ता, बताइए मैं क्या करूं?
4: बड़े परिवार में खर्च ज्यादा तो होगा ही, समस्याएं रहेंगी ही। अगर हम लोगों की तरह आपका भी परिवार सीमित होता तो ये नौबत क्यों आती?
0: मैंने तो दो बच्चों के बाद ही सोचा था, मगर इनकी
6: हाँ, सारी गलती मेरी तो है ही,
2: जो हुआ सो हुआ, अब तो समझिए।
0: अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे भाभी जी।
4: चलिए, सुबह का भूला शाम को घर आ गया।
2: शारदा बहन, अब तुम बचत करना सीखो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, छोटे बच्चों की ट्यूशन करके कुछ न कुछ कमा भी सकती हो, आखिर सिलाई कढ़ाई बुनाई करके मैं कमाती हूँ या नहीं?
6: एक बार गृहस्थी की गाड़ी ढर्रे पर आ जाए तो।
4: गाड़ी लाइन पर आने में देर नहीं लगेगी भाभी जी, अब दोनों पहियों में पक्का मेल जो हो गया है।
7: अभी आपने सुना शोभा रस्तोगी का लिखा प्रहसन खरीदा हुआ दुख, निर्देशिका थी दुर्गा मेहरोत्रा। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की पहली पेशकश जॉलियल बीट टू फिल्म से, आवाजें सुखविंदर सिंह, मुर्तजा मुस्तफा और कादिर मुस्तफा की, संगीत विशाल खुराना का, बोल जुनैद वासी के।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सचिन अ बिलियन ड्रीम्स। अब सुनिए इस फिल्म में AR अमीन और अंजलि गायकवाड़ को इरशाद कामिल ने बोल लिखे हैं और संगीत तैयार किया है AR रहमान ने।

आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के शेष गाने इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
4: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
3: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
5: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
6: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश काबिल फिल्म से, आवाज जुबिन नौटियाल की, संगीत राजेश रोशन का, बोल मनोज मुंतशिर के।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।

0: हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल

0: को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए बीडीआर के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग

0: कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केरलम माहे दक्षिण आंतरिक कर्नाटक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जूली फिल्म के गाने से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। संगीत राजेश रोशन का, बोल आनंद बख्शी के।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: लीजिए सुनिए अनिरुद्ध फिल्म में किशोर कुमार को। तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।

0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: मीठी मीठी बातों में
7: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

खामोशी द म्यूजिकल। अभी आपने इस फिल्म में अलका याग्निक और हरिहरन को सुना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाय इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: ईश्वर।
1: कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनका कार्य उन्हें जीते जी अमर कर देता है। फिल्मों में गिरीश कर्नाड को हमने चरित्र अभिनेता के रूप में देखा, निशांत, स्वामी, मंथन, अपने पराए, मेरी जंग, सुर संगम के तो वे नायक थे, परंतु मूलतः गिरीश सच्चे साहित्यकार और रंगकर्मी थे। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र के पर्यटन स्थल माथेरान में हुआ था, मगर उनकी माँ कृष्णाबाई और पिता डॉक्टर रघुनाथ कर्नाड कन्नड़िगा थे, अर्थात कर्नाटक के रहने वाले थे। प्राथमिक शिक्षा मराठी में हुई। आगे जब वो परिवार कर्नाटक के सिरसी गांव में रहने लगा, तब गिरीश नाटक मंडलियों के संपर्क में आए। वहां के लोकनाट्य यक्षगान के तो वे जबरदस्त प्रशंसक थे। गिरीश जब 14 बरस के थे, तब उनका परिवार धारवाड़ में आ बसा, जहां उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की और फिर वे इंग्लैंड चले गए। ऑक्सफोर्ड के मैग्डलिन शहर में रहकर उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स विषयों को लेकर एमए की डिग्री हासिल की।

1963 में भारत लौटने के बाद गिरीश कर्नाड चेन्नई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लिए काम करने लगे। अब भी नाटकों और लोक कलाओं के प्रति उनका आकर्षण कम नहीं हुआ था। चेन्नई में रहते हुए गिरीश कर्नाड द मद्रास प्लेयर्स नामक नाटक मंडली से जुड़ गए। विदेश जाने से पहले ही 1961 में गिरीश कर्नाड ने जब लिखना शुरू किया था, ये वो समय था जब कन्नड़ साहित्य पर यूरोपीय साहित्य की छाप देखने को मिलती थी। कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की स्थिति यही थी। सी राजगोपालाचारी द्वारा रचित महाभारत का संस्करण गिरीश कर्नाड ने पढ़ा और उन्होंने अनुभव किया कि महाभारत के पात्र उनके मस्तिष्क में विचरण कर रहे हैं और उन पात्रों के संवाद कानों में गूंज रहे हैं। आगे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि मैं तो मात्र लेखनी हूं, एक एक कर सभी पात्र मेरे कानों में बोलते गए और मैं लिखता गया। नाटक तैयार हुआ ययाति। पांडवों के पूर्वज ययाति पर केंद्रित ये नाटक बहुत सफल हुआ और अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद भी हुए। 1964 में गिरीश कर्नाड ने अपना अगला नाटक लिखा तुगलक। 14वीं सदी के दिल्ली के इस सुल्तान की कहानी के माध्यम से तत्कालीन प्रशासन के महत्वाकांक्षी आदर्शवाद का बुलबुला बड़ी सहजता से दर्शाया गया था इस नाटक में। गिरीश कर्नाड को एक नजरिया मिल गया था, कहानी के स्रोत इतिहास या पुराणों से लेना और समकालीन विषयों तथा आधुनिक मानव की अस्तित्व के लिए चल रही लड़ाई के साथ उसे जोड़ देना। मात्र 26 वर्ष की आयु में गिरीश कर्नाड एक उदीयमान

प्रतिभाशाली लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। सन 1971, गिरीश कर्नाड के कला जीवन की दो महत्वपूर्ण घटनाएं, एक ओर 11वीं सदी के संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर से ली गई एक कहानी पर आधारित नाटक हैवदन का निर्माण, और दूसरी ओर एस एल भैरप्पा के उपन्यास पर बनी फिल्म वंश वृक्ष का निर्देशन। लोकनाट्य यक्षगान के सांचे में ढलकर नाटक हैवदन का सफल मंचन हुआ और खूब सराहना मिली। ये नाटक जर्मन भाषा में भी अनुवादित हुआ। उसका निर्देशन किया जानी मानी निर्देशिका विजया मेहता ने। यूं तो 1970 में ही गिरीश कर्नाड का पदार्पण हो चुका था फिल्म संस्कार के पटकथा लेखक के रूप में। इस फिल्म को राष्ट्रपति के स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। निर्देशक के रूप में गिरीश कर्नाड की पहली फिल्म थी वंश वृक्ष, जिसके लिए राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्कृष्ट निर्देशक का पुरस्कार उन्होंने साझा किया बी.वी. कारंत के साथ। आगे कई कन्नड़ फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। जहां तक हिंदी फिल्मों की बात है, 1977 में गिरीश कर्नाड ने जिस फिल्म का निर्देशन किया वो फिल्म थी गोधूली, और 1984 में शशि कपूर निर्मित फिल्म उत्सव।

जी हाँ, क्यों न बजे मृदंग मन में और क्यों न खनके मंजीरा अंग अंग में, जब लेखन और निर्देशन के साथ साथ गिरीश कर्नाड के नाम का डंका अभिनय के क्षेत्र में भी बजने लगा। तब्बलियु नीनदे मगने, ओंदनंदु कलदल्ली, चेलुवी, काडू, कोन्नुरु हेगदित्ती, ये हैं कुछ प्रमुख कन्नड़ फिल्मों के नाम जिनमें गिरीश कर्नाड ने अभिनय किया है। उनके अभिनय से सजी हिंदी फिल्मों की तो एक लंबी फहरिस्त है। जादू का शंख, निशांत, मंथन, स्वामी, जीवन मुक्त, संपर्क, रत्नदीप, बेकसूर, आशा, मनपसंद, अपने पराए, क्षमा, तेरी कसम, आनंद भैरवी, एक बार चले आओ, तराना, जमाना, मेरी जंग, सुरसंगम, सूत्रधार, आकर्षण, मिल गई मंजिल मुझे, चैतन्य, ब्रह्म, अंतर्नाद, गुना, प्राणदाता, आतंक, चाइना गेट, AK-47, पुकार, इकबाल, डोर, 8x10 तस्वीर, आशाएं, लाइफ गोज ऑन, एक था टाइगर, शिवाय, चौक एंड डस्टर और टाइगर जिंदा है। फिल्म सुरसंगम, जो तेलुगु में शंकराभरणम के नाम से बनी थी, इसके नायक पंडित शिवशंकर शास्त्री की भूमिका में थे गिरीश कर्नाड। वो जानदार शानदार अभिनय कैसे भुलाया जा सकता है।

0: 1980 के दशक में कलाकारों के लिए एक और मार्ग प्रशस्त हुआ, दूरदर्शन का। नई नई श्रृंखलाएं बनने लगी। अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार आर के नारायण की कहानियों पर आधारित हिंदी सीरियल बना मालगुड़ी डेज, जिसका नायक था एक नन्हा सा नटखट बालक स्वामी। इस श्रृंखला में स्वामी के पिता की भूमिका की थी गिरीश कर्नाड ने।
1: पिताजी कॉफी, मुझे आपका कमरा चाहिए।
2: किस लिए?
1: मेरा एक दोस्त आ रहा है।
2: तो तुम्हारा अपना कमरा है, वही ले।
1: राजम को वहाँ कैसे ले जाऊं?
2: ये राजम है कौन, इतना बड़ा आदमी?
1: डीएसपी का बेटा है, बहुत बड़ा आदमी है वो।
2: अच्छा ठीक है, तुम ये कमरा ले सकते हो, लेकिन मेज पर रखी हुई चीजों को हिलाना नहीं।
1: बिल्कुल नहीं हिलाऊंगा। पिताजी आप अच्छे पिताजी हैं।
0: दूरदर्शन के ही एक कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका टर्निंग पॉइंट के सूत्रधार के रूप में भी हमने गिरीश कर्नाड को देखा है।

1971 से लेकर 1990 तक गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित नागमंडल, अग्निमट्टू माले और तालेदंड, इन नाटकों को अनुवादित रूप में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपार सफलता मिली। भाषा साहित्य की सेवा के लिए गिरीश कर्नाड को 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1974 में पद्मश्री पुरस्कार, 1992 में पद्मभूषण पुरस्कार से गौरवान्वित किया गया। 1992 में ही उन्हें कन्नड़ साहित्य परिषद का पुरस्कार प्रदान किया गया। 1994 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। 1998 में कालिदास सम्मान तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से गिरीश कर्नाड को सम्मानित किया गया। फिल्मों में उनके योगदान को अनन्य पुरस्कारों से प्रतिष्ठा मिली। 1971 में बेस्ट डायरेक्टर फिल्म वंश वृक्ष के लिए, 1977 में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा तब्बली यू नीनदे मगने के लिए, फिल्म भूमिका की पटकथा के लिए 1978 में बेस्ट स्क्रीन प्ले का पुरस्कार उन्होंने साझा किया श्याम बेनेगल और सत्यदेव दुबे के साथ।

ओंदनंदु कलदल्ली कन्नड़ भाषा में बनी इस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का उन्हें पुरस्कार मिला 1978 में। कन्नड़ भाषा के एक संत कवि कनक पुरंदर पर उन्होंने एक वृत्तचित्र का निर्माण किया था। इसके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार उन्हें दिया गया 1989 में। साथ ही साथ कर्नाटक राज्य सरकार के कई सम्मान उन्हें मिले तथा कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी गिरीश कर्नाड को मिले साहित्य एवं फिल्मों की।

10 जून 2019 भारतीय रंगमंच और सिनेमा तथा कन्नड़ साहित्य जगत के आकाश से एक चमकता सितारा अस्त हुआ।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखक निर्देशक एवं अभिनेता गिरीश कर्नाड पर।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल गया सब कुछ।

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा। वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: ना ना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हीं ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, आहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

0: प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश, आह कितना सुकून है इस प्रेम में।
1: बहुत दूर मुझे जा...

0: और अब छाया गीत कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
1: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: देखो टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ढलती जाए रात FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह है FM रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री